0: overs, maybe three or four overs in the beginning when they batted. They got some easy runs because India did not feel very well. Yeah. Apart from those, really those three overs when they looked like they were in control and even scoring 52 runs in the power play, they were never in control of this match, not while bowling, not even while batting. So I really can't say that they performed well compared to what they were before. And, you know, also having said that, I would say that Pakistan did Pakistan things. And right. They lost very easy wickets this evening. They lost wickets to very bad shots. But it almost looked like they could control the innings. They gave away their wickets very, very easily.
1: All right, Rekha, thank you so much for putting that into perspective. And some victories are very special. And winning against Pakistan is always a special one. Multiple developments, twists and turns have pushed the TMC rebellion saga into its final act, it seems. Rebel TMC MPs met Lok Sabha Speaker Om Birla just after a strategy huddle at the residence of Union Minister Bhupendra Yadav and announced a merger with the Nationalist Citizen Party of India. Kakoli Ghosh Dastidar, who's leading the rebellion, has stated that they have requested the Speaker for a separate sitting in the Parliament and 20 TMC MPs will be merging with the NCPI. She has also added that in future, they will be extending support to NDA and will work under the leadership of Prime Minister Modi. On the other hand, TMC General Secretary Abhishek Banerjee has written a letter to the Speaker Om Birla, requested not to recognize any other faction within the party. Citing a Supreme Court judgment from 2023, he has written that MPs don't have the right to appoint a whip or a parliamentary leader. Reactions.
2: देखिए हमारा जो एआईटीसी के सांसद थे उनमें से दो तिहाई 20 जन हमने अलग से बैठने का चिट्ठी दिया स्पीकर साहब को और हमारे जो सांसद है हम 20 अभी नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी के साथ हम लोग मर्ज करके एनडीए के साथ काम करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हमारे अमित शाह जी के नेतृत्व में
3: नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी को साथ हम लोग मार्च करेंगे तुम कोई पार्टी तू था लेके चले जाते हो तो पहले दिन ही तुम नहीं बोल सकते हो कि हमारा पार्टी को तुम ये नाम दे दो क्योंकि एक पार्टी चलता है ना ये पार्टी जब जाएगा और 20 जुलाई जब पार्लियामेंट खुलेगा तो अब वो पार्टी तृणमूल में आएंगे तब हम लोग बोलेंगे नहीं हम लोग को भी तृणमूल दो क्योंकि तृणमूल से हमारा 2/3 है तब कोर्ट में जाएगा और कोर्ट डिसाइड करेंगे कौन पार्टी हाँ जरूर
4: देखिए जो लोग कर रहे हैं इसका उत्तर वो लोग करेंगे और वो लोग जो बात करके चुनाव जीते हैं उसका विरोध में काम कर रहे हैं वो जाली है मिथ्याचारी है व्यभिचारी है वो अपना बातों से अपने हट जाते हैं ममता जी काकोली को जो दिए है इतना ममता जी जिंदगी में और किसी को दिया है बोल के मेरा मालूम नहीं है तो देखिए सब अपना इच्छित से जाते हैं शायद ये सही भी नहीं होते हैं चाप है
1: Amid growing speculation over an alleged Operation Tiger by Eknath Shinde-led Shiv Sena, Uddhav Thackeray today called a meeting of his party MPs at Matoshri. The meeting was called amid reports claiming that Shinde camp is attempting to woo 2 or 3 Shiv Sena UBT MPs in a bid to bolster its numbers in Parliament. Responding to speculation, Shiv Sena UBT leader Sanjay Raut said that Uddhav Thackeray's meeting with the MPs was called as a routine monthly review. While Shinde camp has dismissed the claims and denied the existence of any Operation Tiger, the reports have fueled fresh speculations on the political alignments and realignments in the state of Maharashtra.
5: ऐसा कोई नियम बना है क्या कि हमारे पार्टी के जो प्रमुख है वो हमारे सांसदों को मीटिंग को नहीं बुला सकते कौन डर रहा है ये रेगुलर मीटिंग है हर महीने में एक मीटिंग होती है विधायक सांसद एक साथ आते हैं हमारे नव सांसद हैं उनको आज बुलाया है उद्धव जी ने उनसे बातचीत होगी जो सांसद यहाँ नहीं पहुंच जाएंगे उनसे हम वीडियो विषय द्वारा उनसे हमारी बातचीत हम करेंगे तो एक रेगुलर प्रोसेस है उसमें नई बात कोई नहीं जिस दिन हमारे हाथ में सत्ता आएगी बीजेपी नहीं

0: टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे भैया, पहले भाग जाएंगे, घर से बाहर नहीं निकलेंगे। आप देखो
1: 2024 से ही सुन रहे हैं कि ऑपरेशन टाइगर होगा, कभी सुन रहे हैं ऑपरेशन लोटस होगा। अरे 9 सांसद हमारे चुन के आए हैं, आपके 240 चुन के आए हैं और एकनाथ शिंदे के साथ आए हैं। टीडीपी और जेडीयू ने मिलकर आपके पूर्ण बहुमत की सरकार बना दी है, अब क्यों पार्टियों को तोड़ रहे हो? कभी ऑपरेशन लोटस, कभी ऑपरेशन टाइगर, आप लोग पार्टी चलाते हैं कि ऑपरेशन थिएटर चलाते हैं कि आप लोग डॉक्टर का काम कर रहे हैं? उद्धव ठाकरे जी की जो मीटिंग है, हम कोशिश करेंगे कि उसमें सब लोग आए। अगर कोई नहीं आ पा रहा है तो वो अपना कारण बताएगा कि क्यों नहीं आ पा रहा है। और संगठन की मीटिंग तो होते रहती है, कोई नई बात थोड़ी है, हर दल करता है, हम भी कर रहे हैं, तो इसमें कोई बहुत ज्यादा चिंता का विषय नहीं होना चाहिए।
2: सांसद हमारे पार्टी में आ रहे हैं या ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे पार्टी के सर्वोच्च नेता आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब ने ये बहुत ही साफ तरीके से कह दिया है कि ना कोई ऑपरेशन टाइगर हम कर रहे हैं, ना हमारी कोई मनीषा है उसके लिए, क्योंकि अभी कुछ भी इलेक्शन तो है नहीं, हम पूरी तरह से बहुमत में हैं और ना हमें उनकी जरूरत है।
3: शिवसेना में वैसा कुछ होगा ऐसा लगता नहीं, क्योंकि एक बात ध्यान में रखिए, वो चुन के आए हो कैसे आए, शिवसेना की वजह से चुन के आए। और दूसरी बात ऐसी है कि उसमें इंडिया आघाड़ी के लोगों ने बड़े पैमाने पे मदद की है, कांग्रेस पार्टी तो पूरी तरह से मदद पे रही है। ऐसे हालात में वो वहाँ जाएंगे, वो चलेगा कैसा, लोग उनको वहाँ घूमने देंगे क्या अपने मतदार संघ में? ऐसा उनको जिसको भी पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में जाना है तो पहले इस्तीफा दीजिए, चुन के आइए।
4: मुळामध्ये आम्ही कोणतंही ऑपरेशन टायगर करत नाही, आम्हाला त्याची आवश्यकताही नाही, परंतु उभाटातले काही लोक फुटणार आहे हे निश्चित झाल्यामुळे जाणून बुजून त्यांच्या संपर्कात आहोत किंवा संपर्क करतोय असं कोणतंही चित्र आमच्या समोर नाहीये आणि आम्ही त्या ऑपरेशन टायगर करतही नाही। परंतु ज्यांना यायचं असेल
5: And a shocking case of alleged medical negligence has emerged from AIIMS Bhopal, a 3-year-old boy undergoing treatment for blood cancer. He died after a formalin was injected into his vein instead of the prescribed medication. The incident took place in December last year, but the police have now registered the FIR against two nursing officials following an internal hospital inquiry. Now the probe found that formalin, a highly toxic chemical, used to preserve tissue samples, had been filled into a syringe which was meant for laboratory use. It was allegedly left near a patient's bed in violation of the protocol. Police have booked two nursing staff members for causing death by negligence.
6: एक जो एफ नाम करके लिखा हुआ था इंजेक्शन, वो उठा के वो उठा लिया और मेरे मैडम से बोला, मैडम ये तो बोन मेरो का सामान है, इसमें एनेस्थिया भी है। तो मैडम बोले लगी, नहीं इसमें एनेस्थिया नहीं है, ये फ्लैशर है। मैंने कही, मैडम ये फ्लैशर नहीं है, ये बोन मेरो का सामान लगा है, इसको मत छेड़ो आप। दूसरी बार मैंने ये बोला और कहने लगे, नहीं ये मुझे पता है। मैंने कही, सस्टी मैडम काउंटर पर बैठी हुई है, उनसे एक बार क्रॉस चेक कर लो आप कि हाँ ये सही है कि नहीं। तो बोलने लगी, तुम डॉक्टर हो कि हम डॉक्टर हैं? तो और तीसरी बार मना करने के बाद भी वो नहीं मानी। मैंने 3 बार कंटिन्यू मना किया और मैं साइड में सामने खड़ा था बच्चे के। मैडम गई और उसका वो सिरिंज का ढक्कन खोला और डायरेक्ट वो सिरिंज उनने लगा दी। सिरिंज मतलब उसमें फ्लैश कर दिया उस इंजेक्शन से, जो कि उस पर एफ नाम करके लिखा था। तो जैसे ही वो दवाई गई और बच्चा तुरंत उधर ही एक्सपायर हो गया।
7: ये वही एम्स है जहां पर सागर के बीना के रहने वाले एक पिता, जिनके 3 साल के बच्चे को कैंसर डायग्नोस हुआ, उसके बाद उसे इलाज के लिए लेकर यहां पहुंचे। बच्चे की गंभीर हालत को देखते हुए उसे यहां पर भर्ती किया गया और उसका इलाज शुरू कर दिया गया, लेकिन अचानक बच्चे की एक इंजेक्शन लगाने के बाद मौत हो गई। दरअसल नर्सिंग स्टाफ की लापरवाही के चलते बच्चे को फॉर्मेलिन का इंजेक्शन इंजेक्ट कर दिया गया। बच्चे के पिता ने नर्स को इंजेक्शन लगाने के दौरान कई बार कहा भी कि ये कुछ और लग रहा है, ये वो दवा नहीं है जो बच्चे को कैंसर के इलाज के लिए दी जा रही है, लेकिन नर्स ने उनकी बात मानने की बजाय उस सिरिंज को बच्चे में इंजेक्ट कर दिया। फिलहाल इस पूरे मामले में एक बार फिर एम्स भोपाल सुर्खियों में है। कैमरामैन राजू बातम के साथ हरप्रीत कौर, रिन एनडी टीवी भोपाल।
5: Prime Minister Narendra Modi has left for Slovakia for his second leg of the visit. Prime Minister visit marks the first ever visit by an Indian Prime Minister to this country. Prime Minister was in France, Nice, for the first leg of his major European outreach vision. Prime Minister Narendra Modi, French President Emmanuel Macron jointly inaugurated Bharat Innovates 2026 conclave in Nice, bringing together startups, innovators, venture capital funds. And just ahead of the Bharat Innovate conclave, Prime Minister interacted with the top global investors, where more than 120 Indian deep tech startups, over 15 higher education research institutions were also present. Addressing the conclave, Prime Minister said that India-France ties go beyond conventional trade and strategic cooperation. He also added that India is not anymore only a consumer, but also a contributor to the world. Listen in.
8: Duniya mein alag-alag desh ek dusre ke saath vyapar karte hain. अलग अलग देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी होती है, लेकिन कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जो शेयर्ड इंटरेस्ट के साथ साथ शेयर्ड विजन से भी ड्राइव होते हैं. भारत और फ्रांस का रिश्ता कुछ ऐसा ही है. इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है. इस रिश्ते में इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है. इस रिश्ते में शेयर्ड वैल्यूज हैं, शेयर्ड विजन भी है. हाँ, आप सबको सौ सवा सौ स्टार्टअप दिख रहे हैं, लेकिन भारत में ऐसे 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप का मेगा पूल है. और अब ये सारे स्टार्टअप्स एक नई ऊर्जा के साथ भारत और वर्ल्ड इकोनॉमी की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं.
9: Our two countries share the mission of a reliable, open and safe AI that could be trusted, that could be responsible and that could be ethical. This is at the heart of the message that we sent in January 2023 by co-chairing the summit for AI.
8: Artificial intelligence, quantum computing, biotechnology, space technologies, और एडवांस मटेरियल्स, ऐसे सभी ऐसी टेक्नोलॉजी हैं जो मानवता के फ्यूचर को शेप करेंगे. ये ह्यूमन सिविलाइजेशन के अगले चैप्टर है. हर टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन मानवता को एक नया अवसर देता है.
9: Minister, I would like to congratulate you, of course, for being here, but also because a few days ago, you've become the Prime Minister with the longest serving time since the independence of India. This long run says a lot about your determined action and the strengths of your country and its wonderful assets and your leadership. So we are very proud to have you here.
8: आपके सामर्थ्य को देखते हुए मैं कहूंगा, भारत innovates with scale and speed. भारत innovates for a sustainable future, and Bharat innovates for the whole world.
9: We practice making India, and for 10 years we've been developing industrial perspectives in the regard of defense and security and innovation and many more. And together we built a lot more than this, and this has led us to build that unique partnership between our two countries that has been strengthened a few months ago.
5: All the details of the two-nation tour of the Prime Minister and much more on our website, ndtv.com. With that, it's a wrap on The Solution. Thank you so much for watching.
10: Step into NDTV Lifeline, your trusted guide to better health across every screen and every format. Your weekend destination for expert voices, wellness hacks, and actionable advice. The conversations that go deeper, where myths are unpacked and health is truly understood. Sharp, credible health insights made for the way you scroll. From symptoms to solutions, medical explainers, interviews, credible health stories, and updates, all in one place. So watch it, hear it, stream it, read it, and follow it. Because in a world full of health noise, trust really is everything.

0: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
1: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा।
2: सबका राजा आर्थोर मसाला।
3: Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rao, as I track all the developments as they break.

0: live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
1: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
2: Across the country,
3: he has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else, only on NDTV Network. The front lines of Kargil, the fury of Operation Sindhu.
4: So many attacks.
3: The chaos and cries of disaster zones, to fighter jet cockpits, and the world's most defining interviews.
4: It's incredible.
3: He has seen history break live, unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
4: Welcome to Left, Right and Center.
3: Hard facts.
5: War struck country.
3: Hard questions.
5: In the Ukraine.
3: 30 years of trust.
6: In the Kargil area.
5: North Ukraine.
7: In France. In Italy.
5: At Srinagar.
7: I am Mr.
5: Vishnu Shom for NDTV.
3: Vishnu Shom. Only on NDTV.
8: Launch control. 0 to 100.
9: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move. This car makes no sense, yet it makes every sense.
10: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi.
9: Your friend said, yeah, Lily. We said, maybe not. Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
11: 5 hours to go for all of DKS's dreams to come true. I'm going to try and get more into the crowds. Here are the pictures, Siddharamaiah.
12: NDTV stands completely engaged with Karnataka.
13: Welcome back. Let's get you the latest as to what's really happening with the rebel MPs of the TMC. Now, they've announced that they're going to be merging with the NCPI. Now, the NCPI General Secretary on their side has denied all those reports, saying that they have no information of these rebel MPs. There are 20 MPs that want to join their party. But in fact, they said they don't even know what's going on and they don't really want these rebel MPs in their party, is what is being said by the NCPI members.
14: दिलीप जी, मैं ऋतिक बात कर रहा हूँ एनडीटीवी से. जरा बताइए, जो मर्जर का खबर दिल्ली से आज आया है, तृणमूल कांग्रेस के जो बागी सांसद 20, वो आपके इस पार्टी यानी नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी जो है, जिसका नींव रखा गया था त्रिपुरा में, उससे जुड़ने जा रहे हैं. आप जनरल सेक्रेटरी है इस पार्टी के, इसके बारे में कोई जानकारी?
15: ओके. नहीं, हमारे पास कोई जानकारी नहीं था. हम तो खबर में देखा है फेसबुक में कि एनसीपीआई के साथ मार्च कर रहा है, अलग कोई खबर हमारे पास नहीं आया है.
14: अच्छा, तो इसका प्रेसिडेंट फिलहाल कौन है? उद्योग कुंडू करके जो शख्स है, ये कौन है?
15: ये तो हमारा जो पार्टी है उसका प्रेसिडेंट था, तो इस टाइम भी वो प्रेसिडेंट है. वो एक समाजसेवी एनजीओ कर्मी है और इस पार्टी का जो प्रोसीड्योर वो हम लोग एक साथ में किया है, बट उसके बाद क्या चल रहा है तो इस टाइम दिमाग से बाहर चल रहा है.
14: इस पार्टी का कोई एक्टिविटी बंगाल के राजनीति में था कभी? आपने चुनाव क्या हुआ था?
15: हुआ है विधानसभा निर्वाचन में भी हुआ है और पंचायत इलेक्शन में भी कैंडिडेट दिया.
14: अच्छा, इस विधानसभा चुनाव में
15: इस विधानसभा में माने कैंडिडेट देने का बात हमारे पास कुछ नहीं आया है.
14: कौन से वाला विधानसभा चुनाव में लड़े थे आप?
15: मैं
14: कोई उम्मीदवार इस पार्टी से?
15: वो विधानसभा में 2024 का जो नहीं उस
14: लोकसभा
15: लोकसभा में नहीं है, उसके पहले विधानसभा में एक दो कैंडिडेट दिया त्रिपुरा में।
14: अच्छा,
15: त्रिपुरा में दिया है।
14: त्रिपुरा में 2023 में आप लोग तीन सीट से उम्मीदवारी दिए थे। बंगाल में कोई पंचायत चुनाव में कभी कोई उम्मीदवारी?
15: बंगाल में हावड़ा में दिया है।
14: अच्छा,
15: तो हावड़ा में और मेदिनीपुर साइड में भी कुछ कैंडिडेट दिया।
14: अच्छा,
6: आगे जो सांसद है दिल्ली में आज कहे स्पीकर से मिलकर, जो वो आपके इन पार्टी में जिन पार्टी का नींव आपने रखा था हावड़ा में आप कह रहे हैं इससे जुड़ने जा रहे हैं, इसके बारे में कोई जानकारी आपके पास
7: ना? इसके मुझे आज कुछ दिन से कुछ दिन चार पांच दिन से मेरे पास खबर आ रहा था जो ये लोग ऐसा कुछ सोच रहे थे, तो हम प्रेसिडेंट को बोले जो आप ऐसा मत करो क्योंकि इससे हमारा बदनाम होगा, क्योंकि आपने तो कुछ किया ही नहीं।
6: सिद्धांत प्रेसिडेंट का था।
7: हाँ, सिद्धांत प्रेसिडेंट लेके अभी इन लोगों के साथ जुड़ना चाहता है, इन लोगों को जोड़ना चाहता है, मगर हम लोग जो लोग पार्टी का पुराना मेंबर है वो कोई राजी नहीं है। अभी भी जो सीए था, जो चार्टर्ड अकाउंट के जो पार्टी का जो हिसाब रखता था वो भी मुझे फ़ोन किए थे, ठीक है। दूसरा जो जिला के मेंबर थे वो लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं सुबह से, जो दादा ऐसा ऐसा हो रहा है आप कुछ बोलो। तभी जाके जो न्यूज़ चैनल मुझे पूछा तो मैंने बोला जो मेरा ऐसा इन लोगों के साथ कोई सपोर्ट मैं देना नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता भी नहीं हूँ, क्योंकि ये पूरा सोच मेरा था, दिमाग से मेरा आया था। मैंने पूरा सिंबल भी बनाया, मैंने पूरा करके सिंबल बना के उन लोगों को दिया, नाम बना के दिया उन लोगों का। त्रिपुरा में पूरा डेढ़ साल मैंने उनको चलाया।
13: Shri, my colleague joining us to get us the very latest on this. What are the claims that are being made by these TMC rebel MPs? And on the other side, the NCP are totally denying any of those claims that are being made.
16: Well, till yesterday, no one even knew about their existence. But after the rebel MPs met the Lok Sabha speaker, they came out and they claimed to merge with the NCPI. However, the Trinamool Congress, under the chairmanship of Mamata Banerjee, have said that any merger like this is not possible. There are procedures that need to be followed. But of course, given the fact that the rebel MPs want to sit separately inside the Lok Sabha, as well as extend support to the BJP-led NDA, that could have triggered them to join hands with another lesser-known political party to extend support to the BJP. However, official announcements and the merger, which needs to be undertaken by given in formal writing to the Election Commission of India, has not happened. And this particular party that Kakoli Ghosh Dostidar claimed of yesterday is an unrecognized political party.
13: Right, Shri, thank you so much for getting us the very latest. Now, the political crisis within the TMC has deepened dramatically, with the rebel camp taking its biggest step yet. A delegation of the rebel MPs here in the national capital met with the Lok Sabha Speaker Om Birla and claimed to have informed him of their decision to merge with the National Citizens Party of India, while also seeking separate seating arrangements in Parliament. It's the rebel MP Sudeep who says that the court will now decide on who is the real TMC. We also had Madan Mitra, who has accused the descendants of doing injustice when it comes to the party and calling their move unfair and a betrayal of the organization that helped elevate them in the first place. All eyes are now on the Speaker of the Lok Sabha, Om Birla, who has received letters from both factions. He will take that final decision on whether to approve the rebel MP's merger with the NCPI or whether to permit them to sit separately in the Parliament.
17: देखिए, हमारा जो AITC के सांसद थे उनमें से दो तिहाई 20 जन हमने अलग से बैठने का चिट्ठी दिया स्पीकर साहब को, और हमारे जो सांसद है हम 20 अभी नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी के साथ हम लोग मर्ज करके NDA के साथ काम करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, हमारे अमित शाह जी के नेतृत्व में।
18: नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी को साथ हम लोग मार्च करेंगे। तुम कोई पार्टी टू थर्ड लेके चले जाते हो तो पहले दिन ही तुम नहीं बोल सकते हो कि हमारा पार्टी को तुम ये नाम दे दो, क्योंकि एक पार्टी चलता है ना। ये पार्टी जब जाएगा और 20 जुलाई जब पार्लियामेंट खुलेगा तो अब वो पार्टी तृणमूल में आएंगे, तब हम लोग बोलेंगे नहीं हम लोग को भी तृणमूल दो, क्योंकि तृणमूल से हमारा टू थर्ड है। तब कोर्ट में जाएगा और कोर्ट डिसाइड करेंगे कौन पार्टी। हाँ जरूर,
19: देखिए जो लोग कर रहे हैं इसका उत्तर वो लोग करेंगे, और वो लोग जो बात करके चुनाव जीते हैं उसका विरोध में काम कर रहे हैं वो जाली है, मिथ्याचारी है, व्यभिचारी है, वो अपना बातों से अपने हट जाते हैं। ममता जी काकोली को जो दिए है, इतना ममता जी जिंदगी में और किसी को दिया है बोल के मेरा मालूम नहीं है। तो देखिए सब अपना इच्छित से जाते हैं, शायद ये सही भी नहीं होते हैं, चाप है।
13: And with that, we're sitting to a short break. On the other side, we're going to get you Prime Minister Modi's visit to Slovakia. That and a lot more. Stay with us.

0: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
1: Now they've announced that they're going to be merging with the NCPI. Now the NCPI General Secretary on their side has denied all those reports, saying that they have no information of these rebel MPs, the 20 MPs that want to join their party. But in fact, they said they don't even know what's going on and they don't really want these rebel MPs in their party, is what is being said by the NCPI members.
2: दिलीप जी, मैं ऋतिक बात कर रहा हूँ एनडीटीवी से। जरा बताइए, जो मर्जर का खबर दिल्ली से आज आया है, तृणमूल कांग्रेस के जो बागी सांसद 20, वो आपके इस पार्टी यानी नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी जो है, जिसका नींव रखा गया था त्रिपुरा में, उससे जुड़ने जा रहे हैं? आप जनरल सेक्रेटरी है इस पार्टी के, इसके बारे में कोई जानकारी?
3: ओके, नहीं, हमारे पास कोई जानकारी नहीं था। हम तो खबर में देखा है फेसबुक में कि एनसीपीआई के साथ मार्च कर रहा है, अलग कोई खबर हमारे पास नहीं आया है।
2: अच्छा, तो इसका प्रेसिडेंट फिलहाल कौन है? उत्तियो कुंडू करके जो शख्स है, ये कौन है?
3: ये तो हमारा जो पार्टी है उसका प्रेसिडेंट था, तो इस टाइम भी वो प्रेसिडेंट है। वो एक समाजसेवी एनजीओ कर्मी है और इस पार्टी का जो प्रोसीड्योर वो हम लोग एक साथ में किया है, बट उसके बाद क्या चल रहा है तो इस टाइम दिमाग से बाहर चल रहा है।
2: इस पार्टी का कोई एक्टिविटी बंगाल के राजनीति में था? कभी आपने चुनाव क्या हुआ था?
3: हुआ है, विधानसभा निर्वाचन में भी हुआ है और पंचायत इलेक्शन में भी कैंडिडेट दिया।
2: अच्छा, इस विधानसभा चुनाव में
3: इस विधानसभा में माने कैंडिडेट देने का बात हमारे पास कुछ नहीं आया है।
2: कोई विधानसभा, कौन से वाला विधानसभा चुनाव में लड़े थे आप?
3: मैं
2: कोई उम्मीदवार पार्टी से?
3: वो विधानसभा में 2024 का जो उस
2: लोकसभा
3: में नहीं है, उसके पहले विधानसभा में एक दो कैंडिडेट दिया त्रिपुरा में।
2: अच्छा,
3: त्रिपुरा में दिया है।
2: त्रिपुरा में 2023 में आप लोग तीन सीट से उम्मीदवारी दिए थे। बंगाल में कोई पंचायत चुनाव में कभी कोई उम्मीदवारी?
3: बंगाल में हावड़ा में दिया है।
2: अच्छा,
3: तो हावड़ा में और मेदिनीपुर साइड में भी कुछ कैंडिडेट दिया।
2: अच्छा,
4: आगे जो सांसद है दिल्ली में आज कहे स्पीकर से मिलकर, जो वो आपके इन पार्टी में, जिन पार्टी का नींव आपने रखा था हावड़ा में, आप कह रहे हैं इससे जुड़ने जा रहे हैं, इसके बारे में कोई जानकारी आपके पास
5: ना? इसके मुझे आज कुछ दिन से, कुछ दिन, चार पांच दिन से मेरे पास खबर आ रहा था जो ये लोग ऐसा कुछ सोच रहे थे, तो हम प्रेसिडेंट को बोले जो आप ऐसा मत करो क्योंकि इससे हमारा बदनाम होगा, क्योंकि आपने तो कुछ किया ही नहीं।
4: सिद्धांत प्रेसिडेंट
5: लेके अभी इन लोगों के साथ जुड़ना चाहता है, इन लोगों को जोड़ना चाहता है, मगर हम लोग जो लोग पार्टी का पुराना मेंबर है वो कोई राजी नहीं है। अभी भी जो सीए था, जो चार्टर्ड अकाउंट के जो पार्टी का जो हिसाब रखता था, वो भी मुझे फ़ोन किए थे। ठीक है, दूसरा जो जिला के मेंबर थे वो लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं सुबह से, जो दादा ऐसा ऐसा हो रहा है आप कुछ बोलो। तभी जाके जो न्यूज़ चैनल मुझे पूछा, तो मैंने बोला जो मेरा ऐसा इन लोगों के साथ कोई सपोर्ट मैं देना नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता भी नहीं हूँ, क्योंकि ये पूरा सोच मेरा था, दिमाग से मेरा आया था। मैंने पूरा सिंबल भी बनाया, मैंने पूरा करके सिंबल बना के उन लोगों को दिया, नाम बना के दिया उन लोगों का, त्रिपुरा में पूरा 1.5 साल मैंने उनको चलाया।
1: Shri, my colleague joining us to get us the very latest on this. What are the claims that are being made by these TMC rebel MPs, and on the other side, the NCP are totally denying any of those claims that are being made?
6: Well, till yesterday, no one even knew about their existence. But after the rebel MPs met the Lok Sabha speaker, they came out and they claimed to merge with the NCPI. However, the Trinamool Congress, under the chairmanship of Mamata Banerjee, have said that any merger like this is not possible. There are procedures that need to be followed. But of course, given the fact that the rebel MPs want to sit separately inside the Lok Sabha, as well as extend support to the BJP-led NDA, that could have triggered them to join hands with another lesser-known political party to extend support.

0: support to the BJP. However, official announcements and the merger, which needs to be undertaken by given in formal writing to the Election Commission of India, has not happened. And this particular party that Kakoli Ghosh Dostidar claimed of yesterday is an unrecognized political party.
1: Right, Shreyashri, thank you so much for getting us the very latest. Now, the political crisis within the TMC has deepened dramatically, with the rebel camp taking its biggest step yet. A delegation of the rebel MPs here in the national capital met with the Lok Sabha Speaker Om Birla and claimed to have informed him of their decision to merge with the National Citizens Party of India, while also seeking separate seating arrangements in Parliament. It's the rebel MP Sudeep who says that the court will now decide on who is the real TMC. We also had Madan Mitra, who has accused the descendants of doing injustice when it comes to the party and calling their move unfair and a betrayal of the organisation that helped elevate them in the first place. All eyes are now on the Speaker of the Lok Sabha, Om Birla, who has received letters from both factions. He will take that final decision on whether to approve the rebel MPs' merger with the NCPI or whether to permit them to sit separately in the Parliament.
2: देखिए हमारा जो एआईटीसी के सांसद थे उनमें से दो तिहाई 20 जन हमने अलग से बैठने का चिट्ठी दिया स्पीकर साहब को और हमारे जो सांसद है हम 20 अभी नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी के साथ हम लोग मर्ज करके एनडीए के साथ काम करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हमारे अमित शाह जी के नेतृत्व में
3: नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी को साथ हम लोग मार्च करेंगे तुम कोई पार्टी टू थर्ड लेके चले जाते हो तो पहले दिन ही तुम नहीं बोल सकते हो कि हमारा पार्टी को तुम ये नाम दे दो क्योंकि एक पार्टी चलता है ना ये पार्टी जब जाएगा और 20 जुलाई जब पार्लियामेंट खुलेगा तब वो पार्टी तृणमूल में आएंगे तब हम लोग बोलेंगे नहीं हम लोग को भी तृणमूल दो क्योंकि तृणमूल से हमारा टू थर्ड है तब कोर्ट में जाएगा और कोर्ट डिसाइड करेंगे कौन पार्टी हाँ जरूर
4: देखिए जो लोग कर रहे हैं इसका उत्तर वो लोग करेंगे और वो लोग जो बात करके चुनाव जीते हैं उसका विरोध में काम कर रहे हैं वो जाली है मिथ्याचारी है व्यभिचारी है वो अपना बातों से अपने हट जाते हैं ममता जी काकोली को जो दिए है इतना ममता जी जिंदगी में और किसी को दिया है बोल के मेरा मालूम नहीं है तो देखिए सब अपना इच्छित से जाते हैं शायद ये सही भी नहीं होते हैं चाप है

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।

0: that has fought so many wars in the mountains and at high altitude.
1: We're standing on the Indian Navy's newest warship.
2: The line of control, Shiv Arun, NDTV.
3: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज
4: स्टेप इन टू NDTV लाइफलाइन योर ट्रस्टेड गाइड टू बेटर हेल्थ अक्रॉस एवरी स्क्रीन एंड एवरी फॉर्मेट योर वीकेंड डेस्टिनेशन फॉर एक्सपर्ट वॉइसेस वेलनेस हैक्स एंड एक्शनेबल एडवाइस. The conversations that go deeper, where myths are unpacked and health is truly understood. Sharp, credible health insights made for the way you scroll. From symptoms to solutions, medical explainers, interviews, credible health stories and updates, all in one place. So watch it, hear it, stream it, read it and follow it. Because in a world full of health noise, trust really is everything.
5: Now, they've announced that they're going to be merging with the NCPI. Now, the NCPI General Secretary on their side has denied all those reports, saying that they have no information of these rebel MPs, the 20 MPs that want to join their party. But in fact, they said they don't even know what's going on and they don't really want these rebel MPs in their party, is what is being said by the NCPI members.
6: Dilip ji, main Rikthik baat kar raha hu NDTV se. Zara bataiye, jo merger ka khabar Delhi se aaj aaya hai, Trinamool Congress ke jo baagi sansad 20, wo aapke is party, yani Nationalist Citizens पार्टी जो है, जिसका नींव रखा गया था त्रिपुरा में, उससे जुड़ने जा रहे हैं. आप जनरल सेक्रेटरी है इस पार्टी के, इसके बारे में कोई जानकारी?
7: ओके, नहीं, हमारे पास कोई जानकारी नहीं था. हम तो खबर में देखा है फेसबुक में कि एनसीपीआई के साथ मार्च कर रहा है, अलग कोई खबर हमारे पास नहीं आया है.
6: अच्छा, तो इसके इसका प्रेसिडेंट फिलहाल कौन है? उद्योग कुंडू करके जो शख्स है, ये कौन है?
7: ये तो हमारा जो पार्टी है उसका प्रेसिडेंट था, तो इस टाइम भी वो प्रेसिडेंट है. वो एक समाजसेवी एनजीओ कर्मी है और इस पार्टी का जो प्रोसीड्योर वो हम लोग एक साथ में किया है, बट उसके बाद क्या चल रहा है तो इस टाइम दिमाग से बाहर चल रहा है.
6: इस पार्टी का कोई एक्टिविटी बंगाल के राजनीति में था कभी? आपने चुनाव क्या हुआ था?
7: हुआ है विधानसभा निर्वाचन में भी हुआ है और पंचायत इलेक्शन में भी कैंडिडेट.
6: अच्छा, इस विधानसभा चुनाव में
7: इस विधानसभा में माने कैंडिडेट देने का बात हमारे पास कुछ नहीं आया है.
6: कौन कोई विधानसभा, कौन से वाला विधानसभा चुनाव में लड़े थे आप?
7: मैं
6: कोई उम्मीदवार इस पार्टी से?
7: वो विधानसभा में 2024 का जो
6: उस लोकसभा
7: लोकसभा में नहीं है, उसके पहले विधानसभा में एक दो कैंडिडेट दिया त्रिपुरा में.
6: अच्छा,
7: त्रिपुरा में दिया है.
6: त्रिपुरा में 2023 में आप लोग तीन सीट से उम्मीदवारी दिए थे. बंगाल में कोई पंचायत चुनाव में कभी कोई उम्मीदवारी?
7: हाँ, बंगाल में हावड़ा में दिया है.
6: अच्छा,
7: तो हावड़ा में. और
8: welcome back. Well, in Noida, the international airport in Jewar has officially begun operations, marking a major milestone as far as India's aviation sector is concerned. The inaugural flight from Lucknow landed at Jewar this morning. The return service, an Indigo flight, is scheduled to depart Noida this evening. Civil Aviation Minister Ram Mohan Naidu hailed this launch as a significant milestone for the country's aviation growth story. And you must note that farmers whose land was acquired for the construction of Jewar Airport, they travelled on the airport's inaugural flight to Lucknow. They also met Chief Minister Yogi Adityanath ahead of their flight. The first phase has been completed with the capacity to handle 12 million passengers annually, and Indigo has begun operations from the airport with more than, well, so far only Indigo and more airlines expected to join in the coming days.
9: We're at the Noida International Airport, where in the first flight is about to take off, and NDTV is going to board this flight from Noida to Bangalore. This is, you know, the arrangement that's been done to mark

0: off the first flight from here today, and that's what's written there, where dreams take off. So I'll be on this flight to Bangalore as well, bringing you all, you know, all about the first flight that's coming in and what's about to happen, and of course the facilities at the Noida Jewar Airport. This is definitely a historic moment because a lot of, you know, land that was taken in is farmland that was taken in by farmers, and we're clearly, you know, all set to go on this first flight.
1: It's a great time for us. We have been waiting for a long time for the start of operations in Noida, so finally the day has come. And what is interesting and very personally I feel happy about is the first flight that is going from here to Lucknow will carry the farmers who have donated the land for this project. So that's very important that we realize the contribution that has been done through them.
0: Precisely. When can we expect, you know, other airlines to chime in here? IndiGo's flying, of course. What about other airlines, Air India, Akasa Air, Air India Express?
1: I think everyone will join the wagon here. So IndiGo is starting, and then we have Akasa also starting its operations very soon. And we would see that very soon we'll have a good network of at least 16 cities across the country being connected from Jewar.
2: हमारा जमीन यही यहाँ बन रहा है, यही जमीन थी, हमारा घर था, लेकिन आज उसको युवा कर दिया है, योगी जी ने युवा कर दिया है। क्यों? साइकिल से हवाई जहाज तक की सवारी, बड़ी बात है। किसान तो मैंड पे चलता था ना, खेत पे, खेत खलियान हमारे चले गए, घर चला गया, लेकिन उन्होंने हमको वर्ल्ड लेवल पे पहुंचा दिया।
0: कितने एकड़ की जमीन आपने दी?
3: 31 बीघा जमीन गई थी हमारे मुख्यमंत्री की वासु, हमने धीरेंद्र सिंह के लिए हमने 31 बीघा जमीन दी। पहले हम साइकिल पे चलते थे, अब हम माने मुख्यमंत्री जी ने हम हवाई चप्पल पैर का हवाई जहाज में बैठा दिए। हमारे मुख्यमंत्री ने ये एयरपोर्ट जो बना है इंटरनेशनल, सबसे बड़ा एशिया का एयरपोर्ट है, बहुत रोजगार है यहाँ, कंपनी भी आ रही है, फिल्म सिटी भी आ रही है।
4: हमारी सबसे पहली जमीन गई थी 50 बीघे जमीन गई थी, सबसे पहले सहमति दी थी, और हम बाबा के जिस जमीन पर हमने ट्रैक्टर चलाया, खेती करी, आज उसी जमीन से हम पहली फ्लाइट में बैठ कर लखनऊ जा रहे हैं।
5: हमको बहुत अच्छा लग रहा है, इस जमीन में हमने स्वयं ट्रैक्टर चलाया, हमने खुद जमीन में यहाँ खेती किसानी की है, और आज उसी जमीन पर से हम एयरपोर्ट बनने के बाद में हम पहली सवारी बन करके लखनऊ जा रहे हैं। बाबा योगी जी का धन्यवाद देने जा रहे हैं कि उन्होंने इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाया और बहुत जल्दी बनाया।
0: As we are standing at the Noida International Airport, you can see towards my left are a group of passengers, families, farmers who have assembled at this new airport to take their first flights. Joining us now here is a family with their, how old is your son?
6: 1.5.
0: With their 1.5-year-old here, and they are taking their flight to Amritsar. Aapka naam?
6: Anjali.
0: जी अंजलि जी, क्या आप लोग कहाँ से आए हैं?
6: हम लोग कुर्जा से आए हैं।
0: अच्छा, तो आप लोगों के लिए तो काफ़ी आसानी हो गई होगी।
6: जी बहुत बहुत, हमेशा दिल्ली जाना पड़ता था, इस बार तो हम 30-40 मिनट्स में यहाँ पर आ गए, बहुत अच्छा लगा, जल्दी आ गए बहुत।
0: यूजुअली दिल्ली जाने में कितना टाइम लगता है आप लोगों को?
6: समथिंग 3 घंटे लगते हैं, आधा टाइम तो वहीं जाने में लग जाता है।
0: आपकी फैमिली रहती है अमृतसर में?
6: नहीं, हम लोगों का ड्रीम था कि फर्स्ट फ्लाइट में हमें जाना है, तो इसलिए हमने फर्स्ट फ्लाइट बुक की ये वाली। हम लोगों ने काफी टाइम जब से मतलब
7: महीने पहले बुक की थी। हमारा ड्रीम था जब जेवर एयरपोर्ट बन रहा था कि हम फर्स्ट फ्लाइट में जाएं। हाँ, फर्स्ट फ्लाइट में जाएं।
0: आपकी बीबी का फर्स्ट फ्लाइट है क्या?
7: नहीं नहीं, ऑलरेडी फर्स्ट फ्लाइट। हाँ, इस एयरपोर्ट से फर्स्ट फ्लाइट
6: लेने का हमारा ड्रीम था, हमने तभी टिकट बुक कर दी थी जब स्टार्टिंग हुई थी।
0: We are at the Noida International Airport today, and joining us now on NDTV are this group of women, some of whom are actually boarding the first flight of their lives. ये आपकी लाइफ का पहला फ्लाइट है?
8: हाँ।
0: कैसा महसूस हो रहा है?
8: बहुत खुशी हो रही है बेटे।
9: हाँ। ना भैया, बहुत अच्छी सुबह घड़ी आई है, जो पहली बार हम यह फ्लाइट में बैठ रहे हैं, हमारे तो भागा ही ना है कि जो फ्लाइट में बैठ जाए, हम इंतजार ही ना हो।
10: All right, moving on to other big stories we're tracking at the moment. After Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav alleged that reports suggested several crores of rupees donated to the Ram temple had gone missing, he urged the judiciary to take suo-motu cognizance of the issue. The BJP-led Uttar Pradesh government has announced a 3-member SIT to investigate the matter following a request from the Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust. Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav earlier alleged that crores of donation funds were missing, and that the matter was extremely sensitive, demanding a court-monitored probe. The BJP, though, have defended the entire situation and clarified that Chief Minister Yogi Adityanath set up the SIT upon the temple.

0: Biltrust's request. We've lined up some crucial political reactions you cannot ignore. Listen in.
1: हम लोगों ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जानकारी प्राप्त की है। जिस समय वहाँ की व्यवस्थाएं सेटअप हो रही थी उस समय भी चर्चा हुई थी और प्रयत्न ये किया गया था कि स्ट्रक्चुरली एक ऐसी व्यवस्था बना ली जाए जिसमें सुरक्षा की सारे प्रबंध हों और चूक नहीं हो। तो हमको बताया गया था कि उस पूरी प्रक्रिया को सीसीटीवी या अन्य वीडियो कैमरास के सामने किया जाए, वो किया था।
2: मंदिर ट्रस्ट बनाया गया, ट्रस्ट के द्वारा उसका पूरा मैनेजमेंट किया जाता है। अभी कुछ सूचनाएं जो आई उसके आधार पर मंदिर ट्रस्ट की इंटरनल मीटिंग में कुछ शंकाओं के आधार पर, कुछ चीज़ों के आधार पर सरकार से अनुरोध किया गया कि इसकी एसआईटी से जांच करा ली जाए। वहाँ भी कमेटी बनी थी, उसी कहा जांच कमेटी के संस्तुति पर एसआईटी की मांग सरकार से की गई, एसआईटी गठित कर दी गई है। तो ट्रस्ट की जिम्मेदारी है, ट्रस्ट जैसा उसने रिकमेंड किया हम लोग जांच कमेटी गठित कर दी है, एसआईटी जाँच करेगी, जो भी तथ्य होंगे वो सब निकल के आ जाएंगे।
3: आप देखिए चढ़ावे की चोरी के बाद कितना दुर्भाग्य है कि हमारे धर्म के और मंदिर के लोगों की जांच पता है कौन करेगा? अधिकारियों बताओ, हमारे धर्म में को आगे बढ़ाने वालों की जांच अधिकारी करेंगे? इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है सनातन धर्म के लिए? कि बताइए, प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चढ़ावे में अगर कोई बात हुई है तो कैमरा बंद कर करके आपस में बातचीत कर लें और कैमरा बंद कर करके आंखें बंद कर करके जो चढ़ावा चोरी हुआ वो वापस रख दो, भगवान प्रभु श्री राम माफ कर देंगे। लेकिन बताओ, अधिकारी जांच करेंगे हमारे भगवान के पुजारियों? ये सनातन धर्म का अपमान है।
4: उस पे हम बहुत बड़ी प्रेस वार्ता करने जा रहे हैं आने वाले 2-3 दिनों में। एक लोगों की आस्था के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है अयोध्या में, उसको पूरा देश देख रहा है और मुझे लगता है कि देश माफ नहीं करने वाला।
5: देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में गलत काम करने वाले हर व्यक्ति को कड़ी सजा हमारी एनडीए की सरकार देती है। इसमें भी एसआईटी का गठन हो गया है और इंतजार करिए, जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होगी।
6: ये बहुत गंभीर विषय है, इसे चंदा चोरी का, इन लोगों की आस्था चोरी का भी विषय है। और एसआईटी क्या कर लेगी? इसके पहले दर्जनों एसआईटी गठित हुई, उसमें क्या हुआ? ईडी सीबीआई की जांच क्यों नहीं? ईडी सीबीआई जांच सिर्फ विपक्ष के लिए है। इस प्रकरण में ईडी सीबीआई की जांच हो और अदालत के देखरेख में होनी चाहिए।
7: जो हमारे मुख्यमंत्री योगी जी है, उन्होंने एसआईटी कमेटी का अनाउंसमेंट किया है, वो पूरी जाँच हो जाएगी, उसमें जो भी दोषी होगी उनके ऊपर कार्रवाई होगी।
0: Alright, moving on now. India have opened their T20 World Cup campaign in dominant fashion with a big win over Pakistan. Smriti Mandana led the charge with a fluent 68 off 44 balls, supported by a quick fire 34 from Richa Ghosh, taking India to 170 for 6. Here are the highlights for you.
8: Smriti Mandana opened the T20 World Cup in style, stroking a 44 ball 68. Even as wickets fell at the other end, she dropped anchor and even had a 91-run stand with Harmanpreet Kaur. Richa Ghosh's 17-ball cameo yielded 34 runs and that took India to 170 for 6. After Muniba was put down early by Richa Ghosh, she and Firoza put the Indian bowlers under pressure early in Pakistan's innings. But once India's best bowler, Deepthi Sharma, came on, the game started turning. She created pressure on the Pakistan batters with dot balls, resulting in the first wicket of Firoza in the fifth over. Just a little bit too clever. Even though Pakistan scored 52-1 in the power play, their highest against India in T20Is, Deepthi kept the pressure and got India the second wicket. Sweep shot from Aisha Zafar landing in Mandana's palms in short fine leg.
9: 4 by Richa.
8: Spin was dominant in Birmingham. Sri Charini got a wicket in her very first over, Saira Jabeen, who lost it for three balls. Pakistan was 72 for 3 at the halfway stage. They lost Muniba Ali and Fatima Sana in successive overs. And by the 13th over, were reduced to 79 for 6. Sri Charini, Deepti Sharma and Shefali Verma pulled the chunk of the damage. Deepti's discipline in bowling paid rich dividends to India. She picked up 3 wickets in the 17th over. It was too good for Pakistan. The Indian spinner opened the World Cup with a spell of 5 for 10. She became the highest wicket taker in women's T20 internationals. India are now in the second position on the league table behind Australia, courtesy that opening 64-run win against Pakistan. Rika Roy for NDTV.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
2: देश का टायर, जेके टायर।

0: also met Chief Minister Yogi Adityanath. And located in Gautam Buddha Nagar district, this airport is now one of Uttar Pradesh government's flagship infrastructure projects, we're told. IndiGo has begun operations from the airport, with more airlines like Akasa expected to join in the coming days. How did day one really kick off at the airport? My colleagues Tanushka Jatta and Bismi have been tracking the latest for you. They spoke to a few passengers. Listen.
1: We're at the Noida International Airport, where in the first flight is about to take off, and NDTV is going to board this flight from Noida to Bangalore. This is, you know, the arrangement that's been done to mark off the first flight from here today. And that's what's written there, where dreams take off. So I'll be on this flight to Bangalore as well, bringing you all, you know, all about the first flight that's coming in and what's about to happen. And of course, the facilities at the Noida Jewar Airport. This is definitely a historic moment because a lot of, you know, land that was taken in is farmland that was taken in by farmers. And we're clearly, you know, all set to go on this first flight.
2: It's a great time for us. We have been waiting for a long time for the start of operations in Noida. So finally the day has come. And what is interesting and very personally I feel happy about is the first flight that is going from here to Lucknow. Mm-hmm. Will carry the farmers who have donated the land for this project. So that's very important that we realize the contribution that has been done through them.
1: Precisely. When can we expect, you know, other airlines to chime in here? IndiGo's flying, of course. What about other airlines, Air India, Akasa, Air India Express?
2: I think everyone will join the wagon here. So IndiGo is starting, and then we have Akasa also starting its operations very soon. And we would see that very soon we'll have a good network of at least 16 cities across the country being connected from Jewar.
3: हमारा जमीन यही यहाँ बन रहा है, यही जमीन थी, हमारा घर था, लेकिन आज उसको युवा कर दिया है, योगी जी ने युवा कर दिया है। क्यों? साइकिल से हवाई जहाज तक की सवारी, बड़ी बात है। किसान तो मैंड पे चलता था ना, खेत पे, खेत खलियान हमारे चले गए, घर चला गया, लेकिन उन्होंने हमको वर्ल्ड लेवल पे पहुंचा दिया।
1: कितने एकड़ की जमीन आपने
4: दी? 31 बीघा जमीन गई थी हमारे मुख्यमंत्री की वासु, हमने धीरेंद्र सिंह के लिए हमने 31 बीघा जमीन दी। पहले हम साइकिल पे चलते थे, अब हम माने मुख्यमंत्री जी ने हम हवाई चप्पल पैर का हवाई जहाज में बैठा दिए। हमारे मुख्यमंत्री ने ये एयरपोर्ट जो बना है इंटरनेशनल, सबसे बड़ा एशिया का एयरपोर्ट है, बहुत रोजगार है यहाँ, कंपनी भी आ रही है, फिल्म सिटी भी आ रही है।
5: हमारी सबसे पहली जमीन गई थी, 50 बीघे जमीन गई थी, सबसे पहले सहमति दी थी, और हम बाबा के जिस जमीन पर हमने ट्रैक्टर चलाया, खेती करी, आज उसी जमीन से हम पहली फ्लाइट में बैठ कर लखनऊ जा रहे हैं।
6: हमको बहुत अच्छा लग रहा है, इस जमीन में हमने स्वयं ट्रैक्टर चलाया, हमने खुद जमीन में यहाँ खेती किसानी की है, और आज उसी जमीन पर से हम एयरपोर्ट बनने के बाद में हम पहली सवारी बन करके लखनऊ जा रहे हैं। बाबा योगी जी का धन्यवाद देने जा रहे हैं कि उन्होंने इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाया और बहुत जल्दी बनाया।
1: As we are standing at the Noida International Airport, you can see towards my left are a group of passengers, families, farmers who have assembled at this new airport to take their first flights. Joining us now here is a family with their, how old is your son?
7: 1.5 years.
1: With their 1.5-year-old here, and they are taking their flight to Amritsar. Aapka naam?
7: अंजलि
1: जी। अंजलि जी, क्या आप लोग कहाँ से आए हैं?
7: हम लोग कुर्जा से आए हैं।
1: अच्छा, तो आप लोगों के लिए तो काफ़ी आसानी हो गई होगी
7: जी? बहुत बहुत, हमेशा दिल्ली जाना पड़ता था, इस बार तो हम 30-40 मिनट्स में यहाँ पर आ गए, बहुत अच्छा लगा, जल्दी आ गए बहुत।
1: यूजुअली दिल्ली जाने में कितना टाइम लगता है आप लोगों?
7: समथिंग 3 घंटे लगते हैं, आधा टाइम तो वहीं जाने में लग जाता है।
1: आपकी फैमिली रहती है अमृतसर में?
7: नहीं, हम लोगों का ड्रीम था कि फर्स्ट फ्लाइट में हमें जाना है, तो इसलिए हमने फर्स्ट फ्लाइट बुक की ये वाली।
1: कितने पहले आप लोगों ने?
7: हम लोगों ने काफी टाइम, जब से मतलब
8: 1 महीने पहले बुक की थी। हमारा ड्रीम था जब जीवन एयरपोर्ट बन रहा था कि हम फर्स्ट फ्लाइट में जाए। हाँ, फर्स्ट फ्लाइट में जाए। नहीं नहीं, ऑलरेडी फर्स्ट फ्लाइट, हाँ, इस एयरपोर्ट से फर्स्ट फ्लाइट,
7: फर्स्ट फ्लाइट लेने का हमारा ड्रीम था, हमने तभी टिकट बुक कर दी थी जब स्टार्टिंग हुई थी।
1: We are at the Noida International Airport today, and joining us now on NDTV are this group of women, some of whom are actually boarding the first flight of their lives. ये आपकी लाइफ का पहला फ्लाइट है?
9: हाँ।
1: कैसा महसूस हो रहा है?
9: बहुत खुशी हो रही है बेटे।
10: हाँ भैया, बहुत अच्छी सुबह घड़ी आई है, जो पहली बार हम यहाँ फ्लाइट में बैठ रहे हैं, हमारे तो भागा ही ना है कि जो फ्लाइट में बैठ जाए, हम इंतजार ही ना हो।
11: क्या नाम? सफा। आप किस गेटअप में हो? आपको पता है आप क्या बने हो?

0: आप क्या बने हो पता है आपको? क्या बने हो? तेज से बोलना। पायलट। कहाँ जाएंगे आप?
1: अमृतसर जाएंगे, घूमी घूमी।
2: On that note, we're slipping into a very quick break. But as always, the news and updates continue right here on NDTV 24/7. In a moment from now, my colleague Radhika Ramaswamy joins you live from Mumbai.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आर्द्र मसाला।
5: Step into NDTV Lifeline, your trusted guide to better health across every screen and every format. Your weekend destination for expert voices, wellness hacks, and actionable advice. The conversations that go deeper, where myths are unpacked and health is truly understood. Sharp, credible health insights made for the way you scroll. From symptoms to solutions, medical explainers, interviews, credible health stories, and updates, all in one place. So watch it, hear it, stream it, read it, and follow it. Because in a world full of health noise, trust really is everything.
6: Launch control, 0 to 100.
7: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
8: This car makes no sense, yet it makes every sense.
9: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi.
7: Your friend said, "Yeah, Lily." We said, "Maybe not." Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
10: The front lines of Kargil. The fury of Operation Sindhu.
11: So many attacks.
10: The chaos and cries of disaster zones. To fighter jet cockpits. And the world's most defining interviews.
11: It's incredible.
10: He has seen history break. Live. Unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
11: Welcome to Left, Right and Center.
10: Hard facts.
11: War-struck country.
10: Hard questions.
11: In the Ukraine.
10: 30 years of trust.
12: In the Kargil area.
11: North Ukraine.
13: In France. In Italy.
11: At Srinagar.
13: I am Srinagar.
11: Vishnu Shom for NDTV.
10: Vishnu Shom. Only on NDTV.
3: Now, they've announced that they're going to be merging with the NCPI. Now, the NCPI General Secretary on their side has denied all those reports, saying that they have no information of these rebel MPs, the 20 MPs that want to join their party. But in fact, they said they don't even know what's going on and they don't really want these rebel MPs in their party, is what is being said by the NCPI members.
14: Dilip ji, main Rikthik baat kar raha hu NDTV se. जरा बताइए, जो मर्जर का खबर दिल्ली से आज आया है, तृणमूल कांग्रेस के जो बागी सांसद 20, वो आपके इस पार्टी यानी नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी जो है, जिसका नींव रखा गया था त्रिपुरा में, उससे जुड़ने जा रहे हैं। आप जनरल सेक्रेटरी है इस पार्टी के, इसके बारे में कोई जानकारी?
15: ओके, नहीं नहीं, हमारे पास कोई जानकारी नहीं था। हम तो खबर में देखा है फेसबुक में कि एनसीपीआई के साथ मार्च कर रहा है, अलग कोई खबर हमारे पास नहीं आया है।
14: अच्छा, तो इसका प्रेसिडेंट फिलहाल कौन है? उत्तियो कुंडू करके जो शख्स है, ये कौन है?
15: ये तो हमारा जो पार्टी है उसका प्रेसिडेंट था, तो इस टाइम भी वो प्रेसिडेंट है। वो एक समाजसेवी एनजीओ कर्मी है और इस पार्टी का जो प्रोसीड्योर वो हम लोग एक साथ में किया है, बट उसके बाद क्या चल रहा है तो इस टाइम दिमाग से बाहर चल रहा है।
14: इस पार्टी का कोई एक्टिव

0: एक्टिविटी बंगाल की राजनीति में था, कभी आपने चुनाव क्या हुआ था?
1: हुआ है विधानसभा निर्वाचन में भी हुआ है और पंचायत इलेक्शन में भी कैंडिडेट दिया।
0: अच्छा, इस विधानसभा चुनाव में
1: इस विधानसभा में माने कैंडिडेट देने का बात हमारे पास कुछ नहीं आया है।
0: कोई विधानसभा, कौन से वाला विधानसभा चुनाव में लड़े थे आप?
1: मैं
0: कोई उम्मीदवार पार्टी से?
1: वो विधानसभा में 2024 का जो लोकसभा में नहीं है, उसके पहले विधानसभा में एक दो कैंडिडेट दिया त्रिपुरा में।
0: अच्छा,
1: त्रिपुरा में दिया है।
0: त्रिपुरा में 2023 में आप लोग तीन सीट से उम्मीदवारी दिए थे। बंगाल में कोई पंचायत चुनाव में कभी कोई उम्मीदवारी?
1: बंगाल में हावड़ा में दिया है।
0: अच्छा,
1: तो हावड़ा में और मेदिनीपुर साइड में भी कुछ कैंडिडेट दिया।
0: अच्छा,
2: बागी जो सांसद है दिल्ली में आज कहे स्पीकर से मिलकर, जो वो आपके इन पार्टी में जिन पार्टी का नींव आपने रखा था हावड़ा में, आप कह रहे हैं इससे जुड़ने जा रहे, इसके बारे में कोई जानकारी आपके पास
3: ना? इसके मुझे आज चार पाँच दिन से मेरे पास खबर आ रहा था जो ये लोग ऐसा कुछ सोच रहे थे, तो हम प्रेसिडेंट को बोले जो आप ऐसा मत करो क्योंकि इससे हमारा बदनाम होगा, क्योंकि आपने तो कुछ किया ही नहीं।
2: प्रेसिडेंट का था
3: सिद्धांत प्रेसिडेंट लेके अभी इन लोगों के साथ जुड़ना चाहता है, इन लोगों को जोड़ना चाहता है, मगर हम लोग जो लोग पार्टी का पुराना मेंबर है वो कोई राजी नहीं है। अभी भी जो सीए था, जो चार्टर्ड अकाउंट के जो पार्टी का जो हिसाब रखता था, वो भी मुझे फ़ोन किए थे। ठीक है, दूसरा जो जिला के मेंबर थे वो लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं सुबह से, जो दादा ऐसा ऐसा हो रहा है आप कुछ बोलो। तभी जाके जो न्यूज़ चैनल मुझे पूछा तो मैंने बोला जो मेरा ऐसा इन लोगों के साथ कोई सपोर्ट मैं देना नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता भी नहीं हूँ, क्योंकि ये पूरा सोच मेरा था, दिमाग से मेरा आया था। मैंने पूरा सिंबल भी बनाया, मैंने पूरा करके सिंबल बना के उन लोगों को दिया, नाम बना के दिया उन लोगों का। त्रिपुरा में पूरा 1.5 साल मैंने उनको चलाया।
4: Shri, my colleague joining us to get us very latest on this. What are the claims that are being made by these TMC rebel MPs, and on the other side, the NCP are totally denying any of those claims that are being made?
5: Well, till yesterday, no one even knew about their existence. But after the rebel MPs met the Lok Sabha Speaker, they came out and they claimed to merge with the NCPI. However, the Trinamool Congress, under the chairmanship of Mamata Banerjee, have said that any merger like this is not possible. There are procedures that need to be followed. But of course, given the fact that the rebel MPs want to sit separately inside the Lok Sabha, as well as extend support to the BJP-led NDA, that could have triggered them to join hands with another lesser-known political party to extend support to the BJP. However, official announcements and the merger, which needs to be undertaken by given in formal writing to the Election Commission of India, has not happened. And this particular party that Kakoli Ghosh Dostidar claimed of yesterday is an unrecognized political party.
4: Right, Shri, thank you so much for getting us the very latest. Now, the political crisis within the TMC has deepened dramatically, with the rebel camp taking its biggest step yet. A delegation of the rebel MPs here in the national capital met with the Lok Sabha Speaker Om Birla and claimed to have informed him of their decision to merge with the National Citizens Party of India, while also seeking separate seating arrangements in Parliament. It's the rebel MP Sudeep who says that the court will now decide on who is the real TMC. We also had Madan Mitra, who has accused the descendants of doing injustice when it comes to the party and calling their move unfair and a betrayal of the organization that helped elevate them in the first place. All eyes are now on the Speaker of the Lok Sabha, Om Birla, who has received letters from both factions. He will take that final decision on whether to approve the rebel MP's merger with the NCPI or whether to permit them to sit separately in the Parliament.
6: देखिए, हमारा जो AITC के सांसद थे उनमें से दो तिहाई 20 जन हमने अलग से बैठने का चिट्ठी दिया स्पीकर साहब को, और हमारे जो सांसद है हम 20 अभी नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी के साथ हम लोग मर्ज करके NDA के साथ काम करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, हमारे अमित शाह जी के नेतृत्व में।
7: नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी को साथ हम लोग मार्च करेंगे। तुम कोई पार्टी टूथा लेके चले जाते हो तो पहले दिन ही तुम नहीं बोल सकते हो कि हमारा पार्टी को तुम ये नाम दे दो, क्योंकि एक पार्टी चलता है ना। ये पार्टी जब जाएगा और 20 जुलाई जब पार्लियामेंट खुलेगा तो अब वो पार्टी तृणमूल में आएंगे, तब हम लोग बोलेंगे नहीं हम लोग को भी तृणमूल दो, क्योंकि तृणमूल से हमारा 2/3 है। तब कोर्ट में जाएगा और कोर्ट डिसाइड करेंगे कौन पार्टी। हाँ जरूर,
8: देखिए जो लोग कर रहे हैं इसका उत्तर वो लोग करेंगे, और वो लोग जो बात करके चुनाव जीते हैं उसका विरोध में काम कर रहे हैं वो जाली है, मिथ्याचारी है, व्यभिचारी है, वो अपना बातों से अपने हट जाते हैं। ममता जी काकोली को जो दिए
4: Good morning, you're watching NDTV 24/7. I'm Radhika Ramaswamy. In a major breakthrough, Donald Trump has declared that US-Iran peace deal is complete and said a formal signing ceremony is scheduled for June 19. And in political news from India, a major setback for the rebel Trinamool Congress camp after dissident MPs claimed they had merged with the NCPI, but the party has now denied any such merger talks. We'll get you all the details, but first the headlines. Setback for TMC rebels as their claimed merger with NCPI hits roadblock. NCPI denies any merger talks, calling the reports baseless and stating it has no interest in bringing TMC rebels into its fold. NEET re-exam portal faces glitches, candidates face login issues, website shows under maintenance, NTA flags possible technical issues. Major milestone in India's aviation expansion, Noida International Airport in Jewar begins commercial flight operations. Big breakthrough in Middle East tensions, Iran-US peace deal announced, deal to be signed on Friday in Geneva, 60-day roadmap to a final settlement. U.S. media reports Netanyahu is seeking an urgent meeting with Trump after G7 summit. Israel is concerned about potential Iran deal terms, wants a role in negotiations, seeks operational freedom in Lebanon. And markets react sharply to Iran-U.S. peace deal announcement. Sensex, Nifty, trade in free and dollar falls to a 10-day low, weakens against major currencies. Brent crude down 4%, gold gains more than 1%. Prime Minister Modi makes historic first ever visit to Slovakia. The Indian diaspora there accords a warm welcome. Prime Minister said this visit would help deepen India-Slovakia ties and open new avenues of cooperation. First up, breaking updates from the state of Tamil Nadu. Tragic news coming in of a 3-year-old girl who was sexually assaulted and has unfortunately died in Tamil Nadu's Tiruvallur district. A migrant worker from Bihar has been arrested. The child found abandoned died during a treatment. Now cops say the child knew the suspect and she was taken away after she was offered biscuits by this individual. A very horrific news coming in from the state of Tamil Nadu. We also have some reactions. Take a look.
9: குழந்தை வீட்டுல இருந்த குழந்தைய பிஸ்கட் குடுத்து கூட்டு போயிருக்காங்க, பொதுல கடிச்ச முள்ளு பொதுல இருந்து கடிச்சது குழந்தை. அந்த முள்ளு பொதுல என்னவோ பாத்ரூம் போறவங்க பாத்துருக்காங்க, என்னடா இது குழந்தை இங்க இருக்கேன்னு தூக்கிட்டு வந்து தண்ணி முக்கு முக்குன்னு தண்ணி ஊத்தி பார்த்தா அந்த குழந்தை இந்த மாதிரி ஒரு சீரியஸ் கண்டிஷன், ரொம்ப சீரியஸ் கண்டிஷன்ல இருந்து.
10: No, the government should be very strict on that. The punishment should be very severe so that others will not resort to such things because of the severe punishment. I can even suggest that instead of putting them in prison for such things.

0: fighter jet cockpits and the world's most defining interviews.
1: It's incredible.
0: He has seen history break live, unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
1: Welcome to Left, Right and Center.
0: Hard facts.
1: War-struck country.
0: Hard questions.
1: In the Ukraine.
0: 30 years of trust.
2: In the Kargil area.
1: North Ukraine. In France. In Italy.
3: At Srinagar.
1: I am Iskandar.
4: Vishnu Shom for NDTV.
0: Vishnu Shom. Only on NDTV.
5: Now, they've announced that they're going to be merging with the NCPI. Now, the NCPI General Secretary on their side has denied all those reports, saying that they have no information of these rebel MPs, the 20 MPs that want to join their party. But in fact, they said they don't even know what's going on and they don't really want these rebel MPs in their party, is what is being said by the NCPI members.
6: Dilip ji, main Rikthik baat kar raha hu NDTV se. जरा बताइए, जो मर्जर का खबर दिल्ली से आज आया है, तृणमूल कांग्रेस के जो बागी सांसद 20, वो आपके इस पार्टी यानी नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी जो है, जिसका नींव रखा गया था त्रिपुरा में, उससे जुड़ने जा रहे हैं? आप जनरल सेक्रेटरी है इस पार्टी के, इसके बारे में कोई जानकारी?
7: ओके, नहीं नहीं नहीं, हमारे पास कोई जानकारी नहीं था। हम तो खबर में देखा है फेसबुक में कि एनसीपीआई के साथ मार्च कर रहा है, अलग कोई खबर हमारे पास नहीं आया है।
6: अच्छा, तो इसका प्रेसिडेंट फिलहाल कौन है? उद्यो कुंडू करके जो शख्स है, ये कौन है?
7: ये तो हमारा जो पार्टी है उसका प्रेसिडेंट था, तो इस टाइम भी वो प्रेसिडेंट है। वो एक समाजसेवी एनजीओ कर्मी है और इस पार्टी का जो प्रोसीड्योर वो हम लोग एक साथ में किया है, बट उसके बाद क्या चल रहा है तो इस टाइम दिमाग से बाहर चल रहा है।
6: इस पार्टी का कोई एक्टिविटी बंगाल के राजनीति में था कभी? आपने चुनाव क्या हुआ था?
7: हुआ है विधानसभा निर्वाचन में भी हुआ है और पंचायत इलेक्शन में भी कैंडिडेट दिया।
6: अच्छा, इस विधानसभा चुनाव में
7: इस विधानसभा में माने कैंडिडेट देने का बात हमारे पास कुछ नहीं आया है।
6: कौन से वाला विधानसभा चुनाव में लड़े थे आप?
7: मैं
6: कोई उम्मीदवार इस पार्टी से?
7: वो विधानसभा में 2024 का जो उस
6: लोकसभा
7: में नहीं है, उसके पहले विधानसभा में एक दो कैंडिडेट दिया है त्रिपुरा में।
6: अच्छा,
7: त्रिपुरा में दिया है।
6: त्रिपुरा में 2023 में आप लोग तीन सीट से उम्मीदवारी दिए थे। बंगाल में कोई पंचायत चुनाव में कभी कोई उम्मीदवारी?
7: बंगाल में हावड़ा में दिया है।
6: अच्छा,
7: तो हावड़ा में और मेदिनीपुर साइड में भी कुछ कैंडिडेट दिया।
6: अच्छा,
8: आगे जो सांसद है दिल्ली में आज कहे स्पीकर से मिलकर, जो वो आपके इन पार्टी में जिन पार्टी का नींव आपने रखा था हावड़ा में, आप कह रहे हैं इससे जुड़ने जा रहे हैं, इसके बारे में कोई जानकारी आपके पास है?
9: ना, इसके मुझे आज कुछ दिन से मेरे पास खबर आ रहा था जो ये लोग ऐसा कुछ सोच रहे थे, तो हम प्रेसिडेंट को बोले जो आप ऐसा मत करो क्योंकि इससे हमारा बदनाम होगा, क्योंकि आपने तो कुछ किया ही नहीं।
8: सिद्धांत प्रेसिडेंट का था?
9: हाँ, सिद्धांत प्रेसिडेंट लेके अभी इन लोगों के साथ जुड़ना चाहता है, इन लोगों को जोड़ना चाहता है, मगर हम लोग जो लोग पार्टी का पुराना मेंबर है वो कोई राजी नहीं है। अभी भी जो सीए था, जो चार्टर्ड अकाउंट के जो पार्टी का जो हिसाब रखता था, वो भी मुझे फ़ोन किए थे, ठीक है। दूसरा जो जिला के मेंबर थे वो लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं सुबह से, जो दादा ऐसा ऐसा हो रहा है आप कुछ बोलो। तभी जाके जो न्यूज़ चैनल मुझे पूछा, तो मैंने बोला जो मेरा ऐसा इन लोगों के साथ कोई सपोर्ट मैं देना नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता भी नहीं हूँ, क्योंकि ये पूरा सोच मेरा था, दिमाग से मेरा आया था। मैंने पूरा सिंबल भी बनाया, मैंने पूरा करके सिंबल बना के उन लोगों को दिया, नाम बना के दिया उन लोगों का, त्रिपुरा में पूरा 1.5 साल मैंने उनको चलाया।
5: Shri, my colleague joining us to get us the very latest on this. What are the claims that are being made by these TMC rebel MPs, and on the other side, the NCP are totally denying any of those claims that are being made?
10: Well, till yesterday, no one even knew about their existence. But after the rebel MPs met the Lok Sabha speaker, they came out and they claimed to merge with the NCPI. However, the Trinamool Congress under the chairmanship of Mamata Banerjee have said that any merger like this is not possible. There are procedures that need to be followed. But of course, given the fact that the rebel MPs want to sit separately inside the Lok Sabha, as well as extend support to the BJP-led NDA, that could have triggered them to join hands with another lesser-known political party to extend support to the BJP. However, official announcements

0: या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी, आर प्योर वर्म इसलिए स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
1: NCPI. Now, the NCPI General Secretary on their side has denied all those reports saying that they have no information of these rebel MPs, the 20 MPs that want to join their party. But in fact, they said they don't even know what's going on and they don't really want these rebel MPs in their party, is what is being said by the NCPI members.
2: Dilip ji, main Rikthik baat kar raha hu NDTV se. जरा बताइए, जो मर्जर का खबर दिल्ली से आज आया है, तृणमूल कांग्रेस के जो बागी सांसद 20, वो आपके इस पार्टी यानी नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी जो है, जिसका नींव रखा गया था त्रिपुरा में, उससे जुड़ने जा रहे हैं? आप जनरल सेक्रेटरी है इस पार्टी के, इसके बारे में कोई जानकारी?
3: ओके, नहीं नहीं नहीं, हमारे पास कोई जानकारी नहीं था। हम तो खबर में देखा है फेसबुक में कि NCPI के साथ मार्च कर रहा है, अलग कोई खबर हमारे पास नहीं आया है।
2: अच्छा, तो इसके इसका प्रेसिडेंट फिलहाल कौन है? उत्तियो कुंडू करके जो शख्स है, ये कौन है?
3: ये तो हमारा जो पार्टी है उसका प्रेसिडेंट था, तो इस टाइम भी वो प्रेसिडेंट है। वो एक समाजसेवी NGO कर्मी है और इस पार्टी का जो प्रोसीड्योर वो हम लोग एक साथ में किया है, बट उसके बाद क्या चल रहा है तो इस टाइम दिमाग से बाहर चल रहा है।
2: इस पार्टी का कोई एक्टिविटी बंगाल के राजनीति में था कभी? आपने चुनाव क्या हुआ था?
3: हुआ है विधानसभा निर्वाचन में भी हुआ है और पंचायत इलेक्शन में भी कैंडिडेट दिया।
2: अच्छा, इस विधानसभा चुनाव में
3: इस विधानसभा में माने कैंडिडेट देने का बात हमारे पास कुछ नहीं आया है।
2: कोई विधानसभा, कौन से वाला विधानसभा चुनाव में लड़े थे आप?
3: मैं
2: कोई उम्मीदवार पार्टी से?
3: वो विधानसभा में 2024 का जो उस
2: लोकसभा
3: में नहीं है, उसके पहले विधानसभा में एक दो कैंडिडेट दिया त्रिपुरा में।
2: अच्छा,
3: त्रिपुरा में दिया है।
2: त्रिपुरा में 2023 में आप लोग तीन सीट से उम्मीदवारी दिए थे। बंगाल में कोई पंचायत चुनाव में कभी कोई उम्मीदवारी?
3: बंगाल में हावड़ा में दिया है।
2: अच्छा,
3: तो हावड़ा में और मेदिनीपुर साइड में भी कुछ कैंडिडेट दिया।
2: अच्छा,
4: बागी जो सांसद है दिल्ली में आज कहे स्पीकर से मिलकर, जो वो आपके इन पार्टी में, जिन पार्टी का नींव आपने रखा था हावड़ा में, आप कह रहे हैं इससे जुड़ने जा रहे हैं, इसके बारे में कोई जानकारी आपके पास है?
5: ना, इसके मुझे आज कुछ दिन से, कुछ दिन, चार पांच दिन से मेरे पास खबर आ रहा था जो ये लोग ऐसा कुछ सोच रहे थे, तो हम प्रेसिडेंट को बोले जो आप ऐसा मत करो क्योंकि इससे हमारा बदनाम होगा, क्योंकि आपने तो कुछ किया ही नहीं।
4: सिद्धांत प्रेसिडेंट का था।
5: सिद्धांत तो प्रेसिडेंट

0: एक सिद्धांत प्रेसिडेंट लेके अभी इन लोगों के साथ जुड़ना चाहता है, इन लोगों को जोड़ना चाहता है, मगर हम लोग जो लोग पार्टी का पुराना मेंबर है वो कोई राजी नहीं है। अभी भी जो सीए था, जो चार्टर्ड अकाउंट के जो पार्टी का जो हिसाब रखता था, वो भी मुझे फ़ोन किए थे, ठीक है। दूसरा जो जिला के मेंबर थे वो लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं सुबह से, जो दादा ऐसा ऐसा हो रहा है, आप कुछ बोलो। तभी जाके जो न्यूज़ चैनल मुझे पूछा, तो मैंने बोला जो मेरा ऐसा इन लोगों के साथ कोई सपोर्ट मैं देना नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता भी नहीं हूँ, क्योंकि ये पूरा सोच मेरा था, दिमाग से मेरा आया था। मैंने पूरा सिंबल भी बनाया, मैंने पूरा करके सिंबल बना के उन लोगों को दिया, नाम बना के दिया उन लोगों का, त्रिपुरा में पूरा 1.5 साल मैंने उनको चलाया।
1: Shri, my colleague joining us to get us very latest on this. What are the claims that are being made by these TMC rebel MPs, and on the other side, the NCP are totally denying any of

0: and vote on the people, the men, the women, the companies in India who have the right stuff is a great opportunity for us.
1: For us, the biggest thing is trust. That's what we provide.
2: We need leaders in India that can help take India being a global superpower.
3: We've got a fantastic jury, and we've left all decisions to the wisdom of the jury.
4: Who will earn India's top business honors? Find out at the NDTV Profit Business Leadership Awards. Coming soon.
5: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, are pure vermicelli. Swadisht, sehatmand, har roz.
6: 5 hours to go for all of DKS's dreams to come true. I'm going to try and get more into the crowds. Here are the pictures, Siddaramaiah.
7: NDTV stands completely engaged with Karnataka.
8: Higher end, check the audio.
6: Let's do it. Let's start.
9: Breaking stories, we're jumping straight into it.
6: We've got a picture of the letter. What is in your letter? You can never predict what's going to happen in Tamil Nadu politics.
10: 21 days in Kashmir. Unfiltered list of things I saw and observed on the ground.
6: Very special ground report from the line of control. There were some children who've lost limbs in the shelling.
11: For a country that has fought so many wars in the mountains and at high altitude.
10: We're standing on the Indian Navy's newest warship.
6: The line of control, Shiv Arun, NDTV.
12: Now, they've announced that they're going to be merging with the NCPI. Now, the NCPI General Secretary on their side has denied all those reports, saying that they have no information of these rebel MPs, the 20 MPs that want to join their party. But in fact, they said they don't even know what's going on and they don't really want these rebel MPs in their party, is what is being said by the NCPI members.
13: Dilip ji, main Rikthik baat kar raha hu NDTV se. जरा बताइए, जो मर्जर का खबर दिल्ली से आज आया है, तृणमूल कांग्रेस के जो बागी सांसद 20, वो आपके इस पार्टी यानी नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी जो है, जिसका नींव रखा गया था त्रिपुरा में, उससे जुड़ने जा रहे हैं? आप जनरल सेक्रेटरी है इस पार्टी के, इसके बारे में कोई जानकारी?
14: ओके, नहीं, हमारे पास कोई जानकारी नहीं था। हम तो खबर में देखा है फेसबुक में कि एनसीपीआई के साथ मार्च कर रहा है, अलग कोई खबर हमारे पास नहीं आया है।
13: अच्छा, तो इसके इसका प्रेसिडेंट फिलहाल कौन है? उद्योग कुंडू करके जो शख्स है, ये कौन है?
14: ये तो हमारा जो पार्टी है उसका प्रेसिडेंट था, तो इस टाइम भी वो प्रेसिडेंट है। वो एक समाजसेवी एनजीओ कर्मी है और इस पार्टी का जो प्रोसीड्योर वो हम लोग एक साथ में किया है, बट उसके बाद क्या चल रहा है तो इस टाइम दिमाग से बाहर चल रहा है।
13: इस पार्टी का कोई एक्टिविटी बंगाल के राजनीति में था कभी? आपने चुनाव क्या हुआ था?
14: हुआ है, वो विधानसभा निर्वाचन में भी हुआ है और पंचायत इलेक्शन में भी कैंडिडेट दिया।
13: अच्छा, इस विधानसभा चुनाव में
14: इस विधानसभा में माने कैंडिडेट देने का बात हमारे पास कुछ नहीं आया है।
13: कोई विधानसभा, कौन से वाला विधानसभा चुनाव में लड़े थे आप?
14: मैं
13: कोई उम्मीदवार पार्टी से?
14: वो विधानसभा में 2024 का जो उस
13: लोकसभा
14: में नहीं है, उसके पहले विधानसभा में एक दो कैंडिडेट दिया त्रिपुरा में।
13: अच्छा,
14: त्रिपुरा में दिया है।
13: त्रिपुरा में 2023 में आप लोग तीन सीट से उम्मीदवारी दिए थे। बंगाल में कोई पंचायत चुनाव में कभी कोई उम्मीदवारी?
14: हाँ, बंगाल में हावड़ा में दिया है।
13: अच्छा,
14: तो हावड़ा में और मेदिनीपुर साइड में भी कुछ कैंडिडेट दिया।
13: अच्छा,
15: आगे जो सांसद है दिल्ली में आज कहे स्पीकर से मिलकर, जो वो आपके इन पार्टी में, जिन पार्टी का नींव आपने रखा था हावड़ा में, आप कह रहे हैं इससे जुड़ने जा रहे हैं, इसके बारे में कोई जानकारी आपके पास
16: ना? इसके मुझे आज कुछ दिन से मेरे पास खबर आ रहा था जो ये लोग ऐसा कुछ सोच रहे थे, तो हम प्रेसिडेंट को बोले जो आप ऐसा मत करो क्योंकि इससे हमारा बदनाम होगा, क्योंकि आपने तो कुछ किया ही नहीं।
15: प्रेसिडेंट का था
16: सिद्धांत प्रेसिडेंट लेके अभी इन लोगों के साथ जुड़ना चाहता है, इन लोगों को जोड़ना चाहता है, मगर हम लोग जो लोग पार्टी का पुराना मेंबर है वो कोई राजी नहीं है। अभी भी जो सीए था, जो चार्टर्ड अकाउंट के जो पार्टी का जो हिसाब रखता था, वो भी मुझे फ़ोन किए थे। ठीक है, दूसरा जो जिला के मेंबर थे वो लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं सुबह से, जो दादा ऐसा ऐसा हो रहा है आप कुछ बोलो। तभी जाके जो न्यूज़ चैनल मुझे पूछा तो मैंने बोला जो मेरा ऐसा इन लोगों के साथ कोई सपोर्ट मैं देना नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता भी नहीं हूँ, क्योंकि ये पूरा सोच मेरा था, दिमाग से मेरा आया था। मैंने पूरा सिंबल भी बनाया, मैंने पूरा

0: announced that they're going to be merging with the NCPI. Now, the NCPI General Secretary on their side has denied all those reports, saying that they have no information of these rebel MPs. There are 20 MPs that want to join their party. But in fact, they said they don't even know what's going on and they don't really want these rebel MPs in their party, is what is being said by the NCPI members.
1: दिलीप जी, मैं ऋतिक बात कर रहा हूँ एनडीटीवी से। जरा बताइए, जो मर्जर का खबर दिल्ली से आज आया है, तृणमूल कांग्रेस के जो बागी सांसद 20, वो आपके इस पार्टी यानी नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी जो है, जिसका नींव रखा गया था त्रिपुरा में, उससे जुड़ने जा रहे हैं? आप जनरल सेक्रेटरी है इस पार्टी के, इसके बारे में कोई जानकारी?
2: ओके, नहीं नहीं, हमारे पास कोई जानकारी नहीं था। हम तो खबर में देखा है फेसबुक में कि एनसीपीआई के साथ मार्च कर रहा है, अलग कोई खबर हमारे पास नहीं आया है।
1: अच्छा, तो इसके इसका प्रेसिडेंट फिलहाल कौन है? उद्योग कुंडू करके जो शख्स है, ये कौन है?
2: ये तो हमारा जो पार्टी है उसका प्रेसिडेंट था, तो इस टाइम भी वो प्रेसिडेंट है। वो एक समाजसेवी एनजीओ कर्मी है और इस पार्टी का जो प्रोसीड्योर वो हम लोग एक साथ में किया है, बट उसके बाद क्या चल रहा है तो इस टाइम दिमाग से बाहर चल रहा है।
1: इस पार्टी का कोई एक्टिविटी बंगाल के राजनीति में था कभी? आपने चुनाव क्या हुआ था?
2: हुआ है विधानसभा निर्वाचन में भी हुआ है और पंचायत इलेक्शन में भी कैंडिडेट दिया।
1: अच्छा, इस विधानसभा चुनाव में
2: इस विधानसभा में
0: back after a warm and closely watched visit to Nice. Of course, Prime Minister Modi now is in Slovakia. We're going to get you all those details. But right now, back home here, let's get you the latest of the participation of three Kerala vice chancellors in an RSS program attended by Chief of the RSS Mohan Bhagwat, has triggered a major political controversy in the state, with both the Chief Minister and the Leader of Opposition criticizing the same. Now, the row erupted after Dr. We're talking about these three of the Kerala vice chancellors who were there, in fact, attending that very event. And now demanding an apology is the Chief Minister Satheesan from the vice chancellors who had attended that event in Kozhikode of the RSS. The participation of these three Kerala vice chancellors is not being welcomed by the newly elected chief minister. The chief minister and the leader of opposition are criticizing the row that's erupted after these three vice chancellors were there at that event of Mohan Bhagwat.
3: The statement issued by the Kerala Chief Minister regarding the participation of three vice chancellors in a program addressed by RSS Chief Sri Mohan Bhagwat is ridiculous. Because there is no law which prohibits the participation of vice chancellor or anyone else in a program of RSS, because RSS is not a banned organization. There is no law
4: ഇന്നലെയും ഇന്നുമായി കേരളത്തിലെ മതനിരപേക്ഷ ഉള്ളടക്കമുള്ള ജനങ്ങളാകെ ശക്തിയായി ഈ നിലപാടിനെ പ്രതിഷേധിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് ഗത്യന്തരമില്ലാതെ കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ഇപ്പോഴും മാപ്പ് പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. മാപ്പ് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്നതാണോ ഇത്? കേരളത്തിൽ ഇടതുകൊണ്ട ജനാധിപത്യ മുന്നണി ഗവൺമെൻറ് ഭരണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ കാവ്യവൽക്കരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗവർണർമാരുടെ എല്ലാ ശ്രമങ്ങൾക്കും ഇടതുകൊണ്ട ജനാധിപത്യ മുന്നണി ശക്തിയായിട്ട് പ്രതിരോധിക്കുമ്പോൾ അതിനനുകൂലമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ച
5: They're responsible. They're responsible for the university where lakhs of children's future are decided. And if you're going and sitting in these RSS meeting, which has a particular ideology and does not groom any scientific temperament, what message are you sending to the students? That either you follow this ideology or we will take care of you during your academic year. Is that the message they're sending? And what is so special? What is it that they're teaching? Does RSS have any scientific temperament? These are the people who are against the constitution.

0: हाँ और क्या हुआ था?
1: हुआ है विधानसभा निर्वाचन में भी हुआ है और पंचायत इलेक्शन में भी कैंडिडेट दिया
0: अच्छा
1: है।
0: इस विधानसभा चुनाव में
1: इस विधानसभा में माने कैंडिडेट देने का बात हमारे पास कुछ नहीं आया है।
0: कोई विधानसभा कौन से वाला विधानसभा चुनाव में लड़े थे आप?
1: मैं
0: कोई उम्मीदवार पार्टी से?
1: वो विधानसभा में 2024 का जो नहीं उस
0: लोकसभा
1: में नहीं है, उसके पहले विधानसभा में एक दो कैंडिडेट दिया त्रिपुरा में।
0: अच्छा
1: त्रिपुरा में दिया है।
0: त्रिपुरा में 2023 में आप लोग तीन सीट से उम्मीदवारी दिए थे। बंगाल में कोई पंचायत चुनाव में कभी कोई उम्मीदवारी?
1: हाँ, बंगाल में हावड़ा में दिया है।
0: अच्छा
1: तो हावड़ा में और मेदिनीपुर साइड में भी कुछ कैंडिडेट दिया।
0: अच्छा
2: आगे जो सांसद है दिल्ली में आज कहे स्पीकर से मिलकर जो वो आपके इन पार्टी में जिन पार्टी का नींव आपने रखा था हावड़ा में आप कह रहे हैं इससे जुड़ने जा रहे हैं, इसके बारे में कोई जानकारी आपके पास
3: ना? इसके मुझे आज कुछ दिन से मेरे पास खबर आ रहा था जो ये लोग ऐसा कुछ सोच रहे थे, तो हम प्रेसिडेंट को बोले जो आप ऐसा मत करो क्योंकि इससे हमारा बदनाम होगा क्योंकि आपने तो कुछ किया ही नहीं।
2: प्रेसिडेंट का था
3: सिद्धांत प्रेसिडेंट लेके अभी इन लोगों के साथ जुड़ना चाहता है, इन लोगों को जोड़ना चाहता है, मगर हम लोग जो लोग पार्टी का पुराना मेंबर है वो कोई राजी नहीं है। अभी भी जो सीए था जो चार्टर्ड अकाउंट के जो पार्टी का जो हिसाब रखता था वो भी मुझे फ़ोन किए थे, ठीक है। दूसरा जो जिला के मेंबर थे वो लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं सुबह से जो दादा ऐसा ऐसा हो रहा है आप कुछ बोलो। तभी जाके जो न्यूज़ चैनल मुझे पूछा तो मैंने बोला जो मेरा ऐसा इन लोगों के साथ कोई सपोर्ट मैं देना नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता भी नहीं हूँ क्योंकि ये पूरा सोच मेरा था, दिमाग से मेरा आया था। मैंने पूरा सिंबल भी बनाया, मैंने पूरा करके सिंबल बना के उन लोगों को दिया, नाम बना के दिया उन लोगों का। त्रिपुरा में पूरा 1.5 साल मैंने उनको चलाया।
4: Shri, my colleague joining us to get us very latest on this. What are the claims that are being made by these TMC rebel MPs, and on the other side, the NCP are totally denying any of those claims that are being made?
5: Well, till yesterday, no one even knew about their existence. But after the rebel MPs met the Lok Sabha Speaker, they came out and they claimed to merge with the NCPI. However, the Trinamool Congress under the chairmanship of Mamata Banerjee have said that any merger like this is not possible. There are procedures that need to be followed. But of course, given the fact that the rebel MPs want to sit separately inside the Lok Sabha, as well as extend support to the BJP-led NDA, that could have triggered them to join hands with another lesser-known political party to extend support to the BJP. However, official announcements and the merger which needs to be undertaken by given in formal writing to the Election Commission of India has not happened, and this particular party that Kakoli Ghosh Dostidar claimed of yesterday is an unrecognized political party.
4: Right, Shri, thank you so much for getting us the very latest. Now, the political crisis within the TMC has deepened dramatically with the rebel camp taking its biggest step yet. A delegation of the rebel MPs here in the national capital met with the Lok Sabha Speaker Om Birla and claimed to have informed him. Let's get you some breaking updates. A television actress Sanchita Ugale, known for her appearances in popular Hindi serials such as Kumkum, Bhagya and Vagle Ki Duniya, was found dead at her residence in Nalasopara East on Sunday evening in an apparent case of suicide. In fact, the incident occurred between 7 p.m. and 7:30 p.m. on June 14. Sanchita lived with her parents and her 15-year-old younger sister in Nalasopara. In fact, police sources confirming that at around 5:30 p.m., her younger sister had stepped out for some work, leaving Sanchita alone at home. During this time, she allegedly hanged herself from a ceiling fan in her bedroom with a sari. So that's the latest we are picking up. Extremely tragic television actress Sanchita Ugale committing suicide. Let's go straight across to Anuj on this. Anuj, if you can take us through details and circumstances surrounding her death, what are the police saying at this point, and what kind of a case has been registered, and what exactly transpired on Sunday evening?

0: All right, let's go across to where the Slovakian Prime Minister is speaking, Prime Minister Modi, on the first visit of an Indian Prime Minister to Slovakia.
1: Agreement between respective ministries when it comes to ensure social security and social protection for these employees. There are more than 600 students from India in Slovakia. Our relationships are developing when it comes to the culture. So we care about these topics, about these things. Because since we have no political obstacles, we have common opinions of various issues, and at the same time, it's important to focus on mutually beneficial cooperation. Our trade, mutual trade, is increasing. It's actually 5 times higher compared to the situation from a few years ago, but there's still more options, more possibilities for Slovak economy and obviously the huge potential of your country. Distinguished Prime Minister, from my heart, I thank you not only on behalf of Slovak delegation, but I thank you on behalf of the whole Slovak Republic, that with the demanding agenda which you have as the Prime Minister of a country which 1.5 billion citizens. Thank you for coming to Slovakia and honoring a small country like Slovakia with your visit. We're a proud country. We're a sovereign country. And in spite of the fact that we're a small country, I believe that we can give something to the world. And I'll do everything that the mission which I am the head of as the Prime Minister of a small sovereign country, that this mission is fulfilled. Welcome to Bratislava. Welcome to Slovakia, distinguished Prime Minister.
2: Predseda vlády Indické republiky.
1: Now the Narendra Modi.
3: Your Excellency, Prime Minister Fico, dono desho ke delegates, media ke sathiyo, namaskar. Dobri den. Hamare aatmita bhare swagat ke liye main Prime Minister Fico ka hardik aabhar vyakt karta hu. Ve anubhavi leader hone ke sath sath Bharat ke sachche mitra hai. Bharat स्लोवाकिया संबंधों को नई ऊंचाई तक पहुंचाने में उनकी मित्रता और अटूट प्रतिबद्धता का विशेष महत्व रहा है. मुझे खुशी है कि आज उनसे मिलकर मुझे हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक पल के साक्षी बनने का सुअवसर मिला. मेरी यह यात्रा किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है. मुझे खुशी है कि इस ऐतिहासिक अवसर पर हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है. यह हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है. फ्रेंड्स, आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की. हमारे द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग में हो रही प्रगति हमारे लिए संतोष का विषय है. लेकिन हमारी क्षमताएं विशाल है, हमारी आकांक्षाएं उससे भी बड़ी हैं. ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज हमारे लिए विशेष रुचि के क्षेत्र हैं. इन सभी विषयों में आज हमने अपनी ताकतों को जोड़कर दोनों देशों के

लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। इंडिया ईयू एफटीए को अंतिम रूप देने में स्लोवाकिया से मिले सहयोग के लिए मैं प्रधानमंत्री जी का विशेष आभार व्यक्त करता हूं। हम इसके जल्द से जल्द इम्प्लीमेंटेशन के लिए काम करेंगे ताकि दोनों देशों के उद्योग, स्टार्टअप्स और ट्रेडर्स इसका अधिकतम लाभ उठा सके। फ्रेंड, टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए एमओयू इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में एआई के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। एआई मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है। हमारा मानना है कि एआई का भविष्य केवल इनोवेशन से नहीं बल्कि ट्रस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ह्यूमन डिग्निटी पर आधारित होना चाहिए। हमारे बीच स्पेस के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का बहुत बड़ा पोटेंशियल है। 2017 में स्लोवाकिया की पहली सैटेलाइट भारत द्वारा लॉन्च की गई थी। आज भारत में स्पेस सेक्टर अभूतपूर्व गति से नई ऊंचाइयां छू रहा है। मैं स्लोवाकिया की कंपनियों को इस विकास यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूं। सिविल न्यूक्लियर एनर्जी भी दोनों देशों के लिए मुख्य प्राथमिकता का क्षेत्र है। हमने इस क्षेत्र में दोनों देशों की इंडस्ट्रीज और एक्सपर्ट्स के बीच सहयोग बढ़ाने पर बल दिया। रक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास और स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का प्रमाण है। मुझे खुशी है कि इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में आज हमने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया। इससे जॉइंट डेवलपमेंट, जॉइंट प्रोडक्शन और डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी। फ्रेंड, वैश्विक मंच पर भी भारत और स्लोवाकिया करीबी सामंजस्य से आगे बढ़ रहे हैं। हम सहमत हैं कि सभी विवादों और तनावों का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए। हम सभी पार्टनर्स के साथ मिलकर इस दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे। हम इस बात पर भी सहमत हैं कि वैश्विक संस्थानों को 21वीं सदी की वास्तविकताओं और चुनौतियों के अनुरूप खुद को रीडिफाइन करना होगा। इस विषय पर हम वैश्विक प्रयासों को सशक्त बनाने की दिशा में काम करेंगे। फ्रेंड, दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक और पीपल टू पीपल टाइज हमारे संबंधों को मजबूत आधार प्रदान करते हैं। भारत के प्राचीन उपनिषदों का स्लोवाक भाषा में अनुवाद किया जाना हमारी सांस्कृतिक निकटता का उत्कृष्ट उदाहरण है। स्लोवाकिया में रह रहे भारतीय मूल के लोग यहाँ की इकोनॉमी और सोसाइटी में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। दोनों देशों के बीच प्रोफेशनल्स और स्किल्ड वर्कर्स की मोबिलिटी बढ़ाने के लिए आज हमने लेबर माइग्रेशन पर एमओयू की घोषणा की है। हम शीघ्र ही सोशल सिक्योरिटी पर एमओयू को भी अंतिम स्वरूप देंगे। एक्सलेंसी, आज की

0: Welcome back. Now, Samajwadi Party MP Javed Ali Khan has stoked a controversy. He alleged that the majority community had started swallowing the poison spread by the BJP and had become poisonous to a great extent. The comment sparked outrage, with Union Minister Giriraj Singh accusing the SP of insulting Hindus and warning that Akhilesh Yadav would face the consequences in the coming UP elections. Adding to the criticism, Congress MP Imran Masood also distanced himself from the remarks, calling them unacceptable and condemning any attempt to target the country's majority community.
1: और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फैलाए गए जहर को बहुसंख्यक आवाम निगलने लगा है, वो जहरीला हो गया है काफी हद तक। मैं आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर आप उसमें जो एक दूसरे पर विश्वास होता था, वो विश्वास धर्म के आधार पर काफी उसके अंदर कमी आई है और वो विश्वास टूटा है।
2: जावेद अली हो या अखिलेश यादव, ये बयान देना कि हिंदू जहरीला हो गए, हाँ हिंदू जहरीला हो गया, उसके लिए जो कट्टरपंथी हो गए, हिंदू जहरीला हो गया उसके लिए जो देश विरोधी अखिलेश यादव के सह पर ये बोल रहे हैं, और इसका खामियाजा अखिलेश यादव को चुनाव में भुगतना पड़ेगा।
3: देखिए, बिल्कुल गलत बात है, इस तरह के बयान किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है। बहुसंख्यक समाज के अंदर बहुसंख्यक लोग मीठे हैं, मोहब्बती हैं, तो ये बयान किसी भी सूरत में जायज नहीं है।
0: Now, a fresh political row has erupted after former Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot launched a sharp attack on the BJP over Hindutva politics. Gehlot questioned whether a party could run solely on a Hindutva agenda and claimed that if former Prime Minister Indira Gandhi were in power today, she would have banned such a party. Accusing the BJP of doing politics in the name of religion, Gehlot also said that the constitution does not permit religion-based politics and mandates equal respect for all faiths. Hitting back at Gehlot, the BJP slammed Congress and said that Hindutva is a way of life, and they have alleged that the Congress is indulging in appeasement politics. The former Rajasthan chief minister further alleged that those in power today are deliberately carrying out religious polarization and questioned why the BJP failed to give tickets to Muslim candidates in the Uttar Pradesh elections.
4: अरे जी की सोच ये हो, हिंदूवादियों को, हिंदुत्ववादियों को भड़काओ और राज करो, और इंदिरा गांधी ऐसी नेता होती ना तो ऐसी पार्टी में बैन लगा देती वो बीजेपी जैसी पार्टी। आप एक हिंदू तो लेके आप पार्टी चला रहे हो, आप हिंदू को लेके राजनीति करना चाहते हो, संविधान में क्या लिखा हुआ है, शपथ संविधान के लिए आपने, शपथ संविधान के लिए आपने, उसमें सभी धर्मों का, सभी जातियों का, सभी वर्गों का सम्मान करने की बात है। आप धर्म के नाम पर राजनीति नहीं कर सकते हो, आज सब कुछ हो रहा है।
5: नहीं नहीं, देखिए उन्होंने तो नफरत की बात कही थी, जिस तरह से नफरत का शिकार आप मुल्क के अंदर लोगों को बना रहे हैं, तो इंदिरा जी होती तो इसके लिए कोई स्पेस ही ना होता, और इंदिरा जी किसी सूरत में नफरत ना फैलने देती, उन्होंने इस परिप्रेक्ष्य में बात कही थी। और अनडेमोक्रेटिक तो आप लोग हैं, आप तो डेमोक्रेसी को ही खत्म करना चाहते हैं, इस देश से डेमोक्रेसी का नाम ही निकालना चाहते हैं।
6: लेकिन बीजेपी कह रही है कि यह अपीसमेंट पॉलिटिक्स है, तुष्टीकरण की राजनीति।
5: इसमें तुष्टीकरण क्या हो गया, इसमें तुष्टीकरण क्या हो गया,
6: बीजेपी प्रतिबंध लगाने की बात को तुष्टीकरण से जोड़?
5: नहीं नहीं, इसमें तुष्टीकरण क्या हो गया, आपने देश को कहां खड़ा कर दिया ला करके, कहां हम महाशक्ति हुआ करते थे, और कहां अमेरिका रोज धमकाता है और आपके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलता, कहां खड़ा कर दिया आपने देश को ला करके।
7: Congress party hates Hindus, it hates Hindutva, and yet another evidence of that has come out in the form of the statement of Ashok Gehlot, who says that if Indira Gandhi was alive, she would have banned the BJP because it speaks about Hindus and Hindutva. Hindutva is a way of life as per the Supreme Court. Why would she ban it? It shows the emergency mindset and the nafrat, the hatred that Congress has towards Hindus. It is a Indian National Caliphate Party. It is not anymore Indian National Congress. It has become a Muslim League Maowadi Congress. And therefore, they say first right of resources for Muslims. They say Congress means Muslims. But if you speak about Hindutva, then you are doing a grave sin and they will take action against you. We have seen the manner in which they have abused Hindus. Hindu terror, Ram Mandir Pran Pratishtha is Naach Gana. They say Mandir Jane Wale Ladki Chhedte Hain.
0: With that, we'll slip into a short break. Coming up on the other side, while Israel is upset with the US-Iran peace deal.

0: Welcome back. Let's get you the latest on the crisis within the Trinamool Congress. And now the rebel group of MPs have chosen to actually join another political party, the National Citizens Party, and a delegation of the MPs also met with Speaker Om Birla. The delegation met in New Delhi with the Speaker Om Birla and claimed to have informed him of their decision to merge with the Nationalist Citizens Party, while also seeking separate seating arrangements in Parliament. Now, this is something that has been challenged, however, by the Trinamool Congress. Rebel MP Sudip Bandopadhyay says the court will now decide on who is the real TMC. TMC MLA Madan Mitra has accused the dissidents of doing injustice to the party, calling their move unfair and a betrayal of the organization that helped elevate them. All eyes now on the Speaker, Om Birla, who has received letters from both the so-called factions of the Trinamool Congress. He will now make the final decision on whether to approve the rebel MP's merger with the NCPI and whether to permit them to sit separately in the Lok Sabha. Do remember, all this is very unprecedented.
1: Party ka neta sunega tab na hoga. Discuss to nahi hota hai. Dictatorship chalta hai. Chup-chup ke sab karta hai. इसीलिए मार खा गया और ऐसा मार खाया ये पब्लिक भी भागा ये तो बोला ना देखिए डबल सर्कल जब तक एक साथ काम नहीं करेगा पब्लिक का काम नहीं होगा खाली बहानाबाजी होगा पॉलिटिक्स का नाम पे खाली झूठ बात चलता है ये नहीं चल सकता ज़्यादा रोज रियल टीएमसी है बोल के तो 20 आदमी मेरा साथ है अगर हम रियल टीएमसी नहीं होते तो 5 आदमी मिलता चार आदमी मिलता
2: व्हेन विल यू क्लेम दिस टू द स्पीकर दैट यू आर द रियल टीएमसी आफ्टर सम
1: वी हैव ऑलरेडी डिमांडेड वी आर ओरिजिनल टीएमसी
3: ये जो सांसद या विधायक सब जीत के आए हैं ये तो ममता बनर्जी का फोटो में ही जीत के आए हैं उनके पीछे में ही जीत के आए हैं अभी क्या वो लोग यदि खड़ा होंगे जीत सकेंगे
4: एकदम 5000 वोट भी इसका कुछ एनसीपीआई नकली पार्टी है उसको नाम पे नहीं जीता

0: हालत बहुत खराब हो गया। विश्वासघात से कहीं कभी बड़ा सुजोग नहीं है।
1: इसमें कुछ हम लोग का कोई वो विषय नहीं है, कौन किसके साथ हाथ मिलाए, कौन किसको छोड़ के गए। तृणमूल आज हम लोग को मालूम था कि ये तृणमूल पार्टी ज्यादा दिन का नहीं है, लेकिन इतना जल्दी तृणमूल टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे ये भी हम लोग का विश्वास नहीं।
2: कोई भी एमपी जाके स्पीकर से मिल सकते हैं, अपनी बात भी कर सकते हैं। क्यों मिले, क्या उद्देश्य था, क्या बातचीत हुई है तो हमें नहीं मालूम, लेकिन ये बात सही है कि बहुत कुछ चल रहा है अंदर अंदर। देखते हैं उसका रिजल्ट क्या आता है। पार्टी रोई टूट रही है टीएमसी, अब उसका भविष्य क्या है वो भी समय बताएगा। लिखित में दे दें, सारा बात को विस्तार से देख करके माननीय स्पीकर उसका निर्णय देंगे। अगर अलग पार्टी का स्वीकृति मिलेगा तो बैठेंगे, ये अधिकार उनको है। लेकिन ये बात सही है कि टीएमसी सब लोग भागना चाहते हैं।
3: तृणमूल कांग्रेस अलग ब्लॉक बना रहे, क्या अलग पार्टी बना रहे, क्या कर रहे, हम लोग को देखने का जरूरत नहीं है। हम लोग यही देखता हूं, हर भारतीय जनता पार्टी का एक वर्कर होने के नाते और पश्चिम बंगाल यही सोचते हैं कि भाजपा आया है डबल इंजन का सरकार, शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में यहाँ पे काम होगा। हम लोग काम शुरू कर दिया, बस वही होगा। तृणमूल को देखने का हमको जरूरत नहीं है, कौन आया कौन गया हमको देखने का जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ यही बोलेंगे, केंद्रीय नेतृत्व जो ही बोलेगा वही होगा।
4: 22 मिले, 29 मिले, 40 मिले, ये उन लोगों का विषय है, ये हमारा कोई विषय नहीं है। तृणमूल का इंटरनल बात है। इतना दिनों से जो तृणमूल जैसे तरीके से चल रहे थे, अभी हारने के बाद सबको लगा कि अभी बोलना चाहिए, अभी उससे दूर होना चाहिए, तो ये हो रहा है। हमारा एक ही मिशन है कि हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, वहाँ से प्रधानमंत्री और यहाँ से मुख्यमंत्री के एक साथ जुड़ के डबल इंजन का सरकार पश्चिम बंगाल का जनता के लिए काम करेंगे। तृणमूल पार्टी ऐसे ही वैनिश हो गया है।
5: इट लुक्स लाइक यू नो इट्स पार्टली ऑपरेशन लोटस, पार्टली इट्स लाइक एन इम्प्लोजन ऑफ द टीएमसी पार्टी। ए पार्टी व्हिच वाज इन पावर फॉर 15 इयर्स टिल अ मंथ अगो सडनली इज इम्प्लोडिंग। दिस इज समथिंग अनप्रेसिडेंटेड, बट दिस इज हैपनिंग इन So I think this has two lessons for all of us. One lesson is, of course, the BJP is bent upon imposing one party, one state model. Not just one nation, one election, but one party, one state. So BJP doesn't want multi-party democracy.
6: Well, with that, time for us to slip into a short break. Coming up on the other side, we'll get you details of the US-Iran deal and also why Israel is so unhappy.

0: Hindutva is a way of life and have alleged that the Congress indulged in appeasement politics. The former Rajasthan chief minister further added that those in power today are deliberately carrying out religious polarization, questioning why the BJP failed to give tickets to Muslim candidates in the elections.
1: हिंदूवादियों को हिंदुत्ववादियों को भड़काओ और राज करो और इंदिरा गांधी जैसी नेता होती ना तो ऐसी पार्टी में बैन लगा देती वो बीजेपी जैसी पार्टी आप एक हिंदुत्व को लेकर आप पार्टी चला रहे हो आप हिंदू को लेकर राजनीति करना चाहते हो संविधान में क्या लिखा हुआ है शपथ संविधान के लिए आपने शपथ संविधान के लिए आपने उसमें सभी धर्मों का सभी जातियों का सभी वर्गों का सम्मान करने की बात है आप धर्म के नाम पर राजनीति नहीं कर सकते हो आज सब कुछ हो रहा है
2: नहीं नहीं देखिए उन्होंने तो नफरत की बात कही थी जिस तरह से नफरत का शिकार आप मुल्क के अंदर लोगों को बना रहे हैं तो इंदिरा जी होती तो इसके लिए कोई स्पेस ही ना होता और इंदिरा जी किसी सूरत में नफरत ना पहन ले देती उन्होंने इस परिप्रेक्ष्य में ये बात कही थी और अनडेमोक्रेटिक तो आप लोग हैं आप तो डेमोक्रेसी को ही खत्म करना चाहते हैं इस देश से डेमोक्रेसी का नाम ही निकालना चाहते हैं
3: लेकिन बीजेपी कह रही है कि यह अपीसमेंट पॉलिटिक्स है तुष्टीकरण की राजनीति आप
2: इसमें तुष्टीकरण क्या हो गया इसमें तुष्टीकरण क्या हो गया
3: बीजेपी प्रतिबंध लगाने की बात को तुष्टीकरण से
2: जोड़ नहीं नहीं इसमें तुष्टीकरण क्या हो गया आपने देश को कहां खड़ा कर दिया ला करके कहां हम महाशक्ति हुआ करते थे और कहां अमेरिका रोज धमकाता है और आपके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलता कहां खड़ा कर दिया आपने देश को ला करके
4: इस तरह कांग्रेस उन्होंने जो कहा ना कि वो बैन कर देती मुझे लगता है कि वो सोच दिखलाता है कांग्रेस की और उनके लीडर इंदिरा गांधी जी की जिन्होंने इमरजेंसी लागू की और ना केवल पॉलिटिकल पार्टीज लेकिन उन्होंने हर संस्था पे उस समय बैन लगाया एक ऐसा समय था वो कि जिसको कोई नहीं भूलेगा और कोई माफ़ भी नहीं करेगा कांग्रेस को जो उन्होंने इमरजेंसी लगाई और जिस तरह से उन्होंने देश की जनता के साथ जो उनका व्यवहार रहा उस समय ये बात कोई नहीं भूलेगा और उनको भूलने भी नहीं देंगे दूसरी बात वो तो डिक्टेटर ही थी अब जिस तरह से उन्होंने डिक्टेटरशिप से राज की हद पे वो आज भी हम लोग उस चीज को मत रहे
5: Congress party hates Hindus, it hates Hindutva, and yet another evidence of that has come out in the form of the statement of Ashok Gehlot, who says that if Indira Gandhi was alive, she would have banned the BJP because it speaks about Hindus and Hindutva. Hindutva is a way of life as per the Supreme Court. Why would she ban it? It shows the emergency mindset and the nafrat, the hatred that Congress has towards Hindus. It is a Indian national caliphate party. It is not anymore Indian Congress. It has become a Muslim. Maoist Congress, and therefore they say first right of resources for Muslims. They say Congress means Muslims, but if you speak about Hindutva, then you are doing a grave sin, and they will take action against you. We have seen the manner in which they have abused Hindus. Hindu terror, Ram Mandir Pran Pratishtha is naach gana. They say Mandir jaane wale ladki chhedte hain.
0: News now from Keralam, where a political storm has erupted after three vice chancellors attended an RSS centenary event addressed by RSS Chief Mohan Bhagwat. Chief Minister V.D. Satheesan has termed the participation a grave lapse, saying it undermined the dignity of the vice chancellor's office and went against Kerala's educational traditions. He said by attending a program led by an RSS leader who preaches extreme communalism, they have undermined that respect. He also demanded an apology, asserting that any promoting communalism cannot be condoned. The left, on the other hand, has gone a step further, saying an apology is not enough. Now, the BJP is hit back strongly. Keralam BJP chief Rajiv Chandrasekhar defended the vice chancellor's presence, arguing that the RSS is not a banned organization and there is no restriction on attending its programs. The BJP has also demanded that Satheesan withdraw his remark, turning the controversy into a fresh ideological flashpoint in the state.
6: See, the statement issued by the Kerala Chief Minister regarding the participation of three vice chancellors in a program addressed by RSS Chief Shri Mohan Bhagwat is ridiculous. Because there is no law which prohibits the participation of vice chancellor or anyone else in a program of RSS. Because RSS is not a banned organization. There is no law which prohibits anybody from participating in that.
7: Innareyum innumayi Keralathile

0: क्या ये गवर्नमेंट ने रजिस्टर की है, ये इसको रिकॉग्निशन है? शायद नहीं है। दूसरा है कि कौन इसकी फंडिंग करता है, इनके सोर्स ऑफ इनकम क्या हैं?
1: Well, with that, time for us to slip into a short break. Coming up on the other side, we'll get you details of the US-Iran peace agreement.

0: Maharashtra, Uttar Pradesh, even Jharkhand, the buzz is about where will Operation Lotus strike next. Of course, the BJP says that it has no hand in what has happened to the TMC, and the opposition itself is facing the consequences of its misgovernance and intra-party discontent. Like in the TMC's case in West Bengal, where 20 MPs have now broken away officially from Didi and have merged into a little-known political party called the NCPI. Not the NCP, not to be confused with the Maharashtra party. This is the NCPI. Preempting this move, Abhishek Banerjee yesterday shot off a letter to Lok Sabha Speaker Om Birla asserting that no group can unilaterally declare itself a separate party, a separate entity in this fashion. This matter, of course, will eventually be decided in court. It's already been challenged. But here's the twist in the tale. Even as suddenly we were told about the existence of this Tripura-based party, NCPI, which finds itself with 20 Lok Sabha MPs now, guess who did not know about what was happening? One of the founder members and organizational secretary of the NCPI. He spoke to NDTV and he said, "I had no idea that this merger is going to take place. In fact, he found out via the news."
1: वो एक स्वीकृत पार्टी है रीजनल स्तर पे, वो पकड़ लो कि दिल्ली के है।
2: क्यों मर्ज कर रहे हैं सुदीप जी आप उसमें?
1: ये सिस्टम है
3: सर,
1: तुम कोई पार्टी टू था लेकर चले जाते हो तो पहले दिन ही तुम नहीं बोल सकते हो कि हमारा पार्टी को तुम ये नाम दे दो, क्योंकि एक पार्टी चलता है ना। ये पार्टी जब जाएगा और 20 जुलाई जब पार्लियामेंट खुलेगा तब वो पार्टी तृणमूल में आएंगे, तब हम लोग बोलेंगे नहीं हम लोग को भी तृणमूल दो, क्योंकि तृणमूल से हमारा 2/3 है, तब कोर्ट में जाएगा।
4: दल में सबका वेलकम है, छोटा दल है मगर अब सब जुड़ना चाहते हैं तो बात करेंगे, बात होना चाहिए।
5: आप इस समय, इस कठिन समय, इस मुश्किल परिस्थिति में आप लीडर को छोड़ के, पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं, आपके विचारधारा, आपके सिद्धांत, आपके वसूल खोखले हैं, ये आप भूलिए मत कि पब्लिक सब देख रही है।
0: With rumors now abounding of how an Operation Tiger may be afoot in Maharashtra and how MPs of the JMM are also getting feelers, the opposition is asking what has happened to constitutional morality. Is this about the BJP trying to break other parties, trying to put democracy itself at stake?
6: 2026 mein ladai kiye the BJP aur NDA ke khilaf, to achanak aap एनडीए में जाएंगे, ये तो पार्टी छोड़ना है, डिफेक्शन है, अनैतिक है, इतना ही मैं बोल सकता।
7: बेशर्मी की हद कर दिए। अरे कल तक जो कहते थे कि दिल में मदीना, आंख में काबा, और बाबा बंगाल जाकर बोले कि बंगाल को काबा की जमीन नहीं बनने देंगे, अब बाबा के साथ बैठकर जिसने कहा था कि दिल में मदीना, आंख में काबा, दोनों बैठकर चाय पी रहे हैं, दोनों बैठकर चाय पी रहे हैं और गाली किसको दे रहे हो? ओवैसी को। अरे मैं जानता था ये तमाम के तमाम कठपुतलियां हैं बीजेपी आरएसएस के, एक हवा के झोंके में तमाम ने सर झुका दिया और बीजेपी में चले गए।
8: ये दोही नहीं है, असंवैधानिक है, इन्हें शर्म नहीं आ रही? क्या, किस नारे पर जीत कर आए थे आप? आप तो बीजेपी हराने के लिए जीत कर आए थे, लोगों के साथ दगा कर रहे हो, अपने लोगों के साथ दगा करके जा रहे हो आप। खास तौर से उन तीन लोगों के लिए कह रहा हूं मैं,
9: किन तीन
8: जो तीन मुसलमान गए हैं, किस मुंह से मुंह दिखाओगे जा करके?
10: जिन लोगों को कूड़े दान से निकाल कर ममता ने विधानसभा लोकसभा में भेजा और मंत्री बनाया, वे धोखा दे के चले गए, चले जाने दो, ममता की तो पार्टी पार्टी रहेगी, ये है कि इनका कोई ठिकाना कहीं नहीं होगा।
0: And so the simple question today on the show is this: what does one make of the political shifts taking place from Bengal to Maharashtra? Is this sharp politics or a theater of the absurd? Joining us on the debate today, we have Charu Pragya, spokesperson of the BJP. Tushar Gupta, political analyst, joins us along with Shubhankar Bhattacharya and Ashutosh. We'll also have Saugata Roy from the Trinamool Congress joining us in just a second. Charu Pragya, the questions are going to be first to you today. Power at any cost, is it? Saam, daam, dand, bhed. Isko तोड़ो, उसको जोड़ो, mergers and acquisitions, it seems more like a private limited